दोस्तों, जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। हम सारी उम्र धन दौलत, नाम और पहचान बनाने में लगा देते हैं, लेकिन आखिर में साथ जाता क्या है? ना ये दौलत, ना ये शोहरत साथ रह जाते हैं तो बस हमारे किए हुए कर्म और लोगों के दिलों में छोड़ी हुई हमारी यादें। किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देना, किसी जरूरतमंद का हाथ थाम लेना, किसी दुखी इंसान को दो मीठे बोल कह देना, शायद यही तो दौलत है जो हमारे जाने के बाद भी हमारे साथ रहती है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:39 और 18 सेकंड। भोर सुहानी कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, जब मौसम सुहाना हो, हवाओं में ठंडक हो और मन में खुशी की एक मीठी सी लहर उठ रही हो, तो लगता है जैसे प्रकृति भी हमारे साथ गुनगुना रही है। कभी कभी एक हल्की सी हवा भी पुराने दिनों की कोई खूबसूरत याद दिला देती है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।

0: दोस्तों, जिंदगी में खुशियां हमेशा बड़ी वजहों से नहीं आती। कभी किसी अपने की मुस्कान, कभी कोई प्यारा सा गीत और कभी छोटी सी अच्छी बात भी मन को खुश कर जाती है। तो बस यूं ही अपनी मुस्कान को बनाए रखिए, दिल में उम्मीद जगाए रखिए और जिंदगी के हर पल को गीत की तरह गुनगुनाते रहिए। इसी खूबसूरत संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम के यानी भोर सुहाने कार्यक्रम को संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच

0: बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इससे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. The Finance Ministry has clarified that there will be no charges for person-to-person P2P UPI transactions irrespective of the amount transferred. The Ministry added yesterday that person-to-merchant P2M payments up to 2,000 rupees, including transactions covered under the zero MDR framework for small merchants, will also remain free. Consequently, the Ministry stated that about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. National Payments Corporation of India, NPCI, has announced that a revised UPI merchant discount

0: जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए,
0: सजग रहिए।

Namaste Hyderabad and a very warm welcome to everyone tuned into Rainbow FM 101.9. मैं हूँ आपकी दोस्त आपके आरजे दिव्या और अगले कुछ घंटों के लिए आपके रेडियो फैमिली का एक छोटा हिस्सा बनूंगी. सो वेदर यू आर लिसनिंग टू अस व्हाइल गेटिंग रेडी फॉर वर्क, ड्राइविंग थ्रू हैदराबाद ट्रैफिक, हैविंग योर मॉर्निंग चाय, सिटिंग इन ऑफिस, फिनिशिंग योर हाउस होल्ड कोर्स, वेर एवर यू आर, रेनबो इज राइट देयर विद यू. नमस्ते, हेलो, आदाब. और जैसे हम कहते हैं रेनबो के साथ लाइफ रंगीन, रेनबो तो जीवितम रंगुलमयम. आज का दिन भी कुछ खास है. इट इज 16th September एंड टुडे वी ऑब्जर्व वर्ल्ड ओजोन डे, ऑफिशियली नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर. अब ओजोन लेयर सुनते ही स्कूल साइंस क्लास याद आ गई ना. अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेज को रोकता है, बिल्कुल. लेकिन आज हम इसको टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे. हम बात करेंगे कि ओजोन लेयर एक्चुअली हमारी डेली लाइफ के कैसे कनेक्टेड है. बिकॉज समटाइम्स द थिंग्स प्रोटेक्टिंग आर प्लैनेट आर थिंग्स वी डोंट इवन सी. बिकॉज दोज थिंग्स आर द अल्टीमेट प्रोटेक्शन फॉर अस. जैसे हवा, वी डोंट सी इट बट वी नो एग्जैक्टली हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज. आर ओजोन लेयर भी कुछ ऐसे ही है. इट इज़ इनविजिबल बट इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट. तो आज के दिन लेट्स टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट दैट इनविजिबल शील्ड अराउंड आर प्लैनेट. और साथ में म्यूजिक तो बनता ही है. सो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटिफुल वेडनेसडे मॉर्निंग विद सम म्यूजिक. स्टे ट्यून्ड टू रेनबो FM 101.9, रेनबो के साथ लाइफ रंगीन.

0: And I'll write your name.
1: Welcome back, listeners. So hope you enjoyed Blank Space by Taylor Swift. And today we were talking about World Ozone Day. So on, you're listening to Namaste Hello Adab on Rainbow FM 101.9. Abhi humne baat shuru ki thi World Ozone Day ki. Chaliye thoda simple language mein samajhte hain. Ozone layer basically Earth ke atmosphere mein ek protective layer hai. Aur iska sabse important kaam protecting us from harmful ultraviolet radiation coming from the sun. Sunlight to zaruri hai. Sunlight ke bina life imagine karna mushkil hai. Lekin sunlight mein kuch ultraviolet rays bhi hoti hai jo excessive exposure mein humans, animals, plants aur environment ke liye harmful to ho sakti hai. So you can think of the ozone layer as Earth's natural sunscreen. अर्थ का सनस्क्रीन कितना इंटरेस्टिंग है ना. हम बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाते हैं और अर्थ के पास नेचुरली अपना प्रोटेक्टिव लेयर है. मन भूमिनी कापाड़ ओक रक्षण कवचम लांटिది ఈ ओजोन लेयर. और इस प्रोटेक्टिव लेयर को प्रिजर्व करना सिर्फ साइंटिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इट्स एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट आर नॉट समबडी एल्स प्रॉब्लम. हम सब का घर है. हम सब इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करना चाहिए. जब अननेसेसरी फ्यूल कंजप्शन अवॉइड करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चॉइसेस करते हैं, वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन आवर स्मॉल वे. मे बी एक पर्सन का एक्शन स्मॉल लगता है, बट इमेजिन मिलियंस ऑफ पीपल डूइंग स्मॉल थिंग्स कंसिस्टेंटली. चिन्न चिन्न मार्पुलु पेद्द फलितालु इस्तुन्नायि. Small changes can create a big difference. So with that, here comes another song cute for you. Stay tuned.

वेलकम ब्याक लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड इन टू FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ रंगीन है एंड होप यू एंजॉयड ऑल द सॉन्ग्स प्लेड बाय मी। एंड ऑफ कोर्स आज ओजोन डे है और आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यू नो द ओजोन लेयर इज एक्चुअली कॉन्स्टेंटली बींग फॉर्म्ड एंड ब्रोकन डाउन नेचुरली। इट्स यू नो वेरी मच डिफरेंट एंड यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ डायनामिक chemical process happening in our atmosphere and scientists have been closely monitoring it for decades. And isme khushkhabri ye hai ki the story of the ozone layer is also considered one of the example where international cooperation made a real difference. Countries came together, scientists worked together, policies changed and the world took action. मतलब जब दुनिया मिलकर काम करे तो इम्पॉसिबल लगने वाली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती है। क्या ब्यूटीफुल थॉट है ना। मनम कलसि पनि चेस्ते मार्पु तप्पकुंडा वस्तुंदी और शायद एनवायरमेंट के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है। वी डोंट नीड टू बी परफेक्ट, वी जस्ट नीड टू बी कॉन्शियस। एंड विद दैट हियर कम्स माइकल जैक्सन अर्थ सॉन्ग।

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: Welcome back, listeners. आप सुन रहे हैं FM Rainbow 101.9 with RJ Divya. नमस्ते, हेलो, आदाब. और हम ओजोन डे के बारे में बहुत सारे कुछ बातें की हैं और थोड़ा बहुत मैंने भी कुछ यू नो सजेशंस दिए. एंड इफ़ यू लाइक इट यू कैन फॉलो देम. एंड इधर एक और सजेशन भी है. आई हैव सीन मैनी पीपल ट्रैवलिंग ऑन यू नो एक ही कार पे चलते हैं एक ही लोग. यू नो कार कैन बी यूज्ड व्हेन फोर और फाइव पीपल आर गोइंग ऑन. सो दैट वुड बी हेल्पफुल इफ़ यू कैन चूज सम यू नो इको फ्रेंडली चॉइसेस बाय आइदर गोइंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफ पॉसिबल और यू कैन गो बाय वॉक. And if possible, carpooling. It's a really good option and you have many

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9 और नमस्ते हेलो आदाब विद आरजे दिव्या. एंड यू नो द टाइम एट आवर स्टूडियो इज 10:54 एग्जैक्टली. एंड जस्ट लाइक दैट वी हैव ऑलमोस्ट रीच द एंड ऑफ आवर फर्स्ट आवर टुडे ऑन वर्ल्ड ओजोन डे. वी स्पोक अबाउट समथिंग दैट एग्जिस्ट हाई अबाउ अस बट अफेक्ट्स लाइफ राइट हियर ऑन ग्राउंड अर्थ. The ozone layer reminds us of something very simple. Protection is something we often notice only when it is missing. So let's appreciate our planet. अप और अपनी तरफ से जितना पॉसिबल है उतना जरूर करें. लेट्स मेक कॉन्शियस चॉइसेस. मन भूमि मन बाध्यता, अवर प्लानट अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. और दिस इज रेनबो FM 101.9, रेनबो के साथ लाइफ रंगीन. रेनबो तो जीवितम रंगुलमयम. स्टे विथ मी बिकॉज द म्यूजिक कंटिन्यूज एंड सो डज आर ब्यूटिफुल मॉर्निंग.

वेलकम बैक लिसनर्स. अभी आप सुने धीरे धीरे फ्रॉम अ फिल्म देवरा, संग बाय शिल्पा राव. एंड यू नो जाह्नवी कपूर लुक्स लाइक गॉड इज इन द सॉन्ग.

वेलकम बैक लिसनर्स, 11 बज चुका है और नमस्ते हेलो आदाब, विद आर जे दिव्या. वेलकम टू द सेकेंड आवर. यू नो, फर्स्ट आवर वॉज ऑल अबाउट आवर प्लैनेट. अब थोड़ा मूड हल्का करते हैं बिकॉज लाइफ इटसेल्फ इज अ मिक्स, इजंट इट? थोड़ा काम, थोड़ा टेंशन, थोड़ी प्लानिंग, थोड़ा कंफ्यूजन और थोड़ा चाय. हैदराबाद पे है और ईरानी चाय एंड सॉल्ट बिस्किट्स के साथ तो बनता है. और बहुत सारा म्यूज़िक. लाइफ में परफेक्ट बैलेंस तो नहीं होता, बट एक अच्छा गाना कभी कभी बैलेंस ज़रूर कर देता है. सो लेट्स गेट इनटू आवर नेक्स्ट म्यूजिकल मूड. हियर कम्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक.

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9 विद आरजे दिव्या ऑन। नमस्ते, हेलो, आदाब। और अभी अभी आप जो सॉन्ग सुना है वो है फ्रॉम द फिल्म रेस जालिमा, सॉन्ग बाय हर्षदीप कौर और अरिजीत सिंह। एंड विद दैट, यू नो, कभी आपने सोचा एक छोटा सा सिक्का कैसे बनता है? यू नो, जो कॉइन हम रोज पॉकेट में कैरी करते हैं, है वो एक्चुअली कैसे बनता है? रुपी 1, 2, 5 या 10 का सिक्का छोटा ज़रूर है, बट इसके पीछे एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। और उसके बारे में जानकारी जानने से पहले कुछ और प्रोमोस है, सो स्टे ट्यून्ड।
1: ఏది మామా తిన్నాను పోదామంటే ఏ బిర్యానీ మండియో అనుకుంటే ఈ అజీ ప్లేస్కి పట్టుకొచ్చినావు.
2: వింటేజ్ బార్స్ అన్నీ ఇట్లనే ఉంటాయి మచ్చా, ఎప్పుడు తిన్నదే ఏం తింటావు? ఇక్కడ టమాటర్ కాట్ మస్తు ఉంటుంది.
1: అదేంది మామా, నేను ఎప్పుడు వినలేదు.
2: ఇదిగో ఆర్డర్ వచ్చేసింది, ముందు తిని చెప్పు ఎట్లుందో.
1: కిరాకుంది మామా, ఈ ప్లేస్లు ఈ డిష్లు ఎట్లా తెలుస్తాయి మామా నీకు ఇవన్నీ?
2: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.
3: Hello listeners, are you someone who loves getting lost in the pages of a good book and wishes others could experience the same joy that you found between those pages? Have you ever found yourself recommending a book to your friends just because you simply felt that this is a must read? What if we told you that you could now share that experience not just with one person, but with thousands of listeners? If the thought of your voice bringing a story to life excites you, then this one is for you. FM Rainbow is thrilled to present Read with Rainbow, a brand new initiative that celebrates the joy of reading through the voices of young readers. If you're between 15 to 25 years of age and have a passion to share a good read with listeners across the airwaves, then share us your name and mobile number to our mailing address readwithrainbow2026@gmail.com. So dear listeners, what are you waiting for? Don't just read a great book, be the voice that shares it. Read with Rainbow, where every page finds a voice and every voice inspires a reader.
0: तो वेलकम बैक लिसनर्स, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कैसे कॉइन्स बनते हैं, यू नो, सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉइन्स बनता कौन है। इंडिया में कॉइन्स की प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होती है और कॉइन्स को मिंट करने का काम इंडिया गवर्नमेंट मिंट्स करती हैं। ये मिंट्स सिक्योरिटी प्रिंटिंग and Minting Corporation of India Limited, यानी SPMCIL के अंडर आती है। इंडिया में गवर्नमेंट के मिंट्स मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, कॉइन मैन्युफैक्चर कैसे होता है। सबसे पहले डिसाइड होता है कि कॉइन का डिज़ाइन कैसे होगा, उसका साइज, वेट और मेटल कंपोजिशन क्या होगा। उसके बाद रिक्वायर्ड मेटल को प्रोसेस करके लार्ज शीट्स या स्ट्रिप्स के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। फिर आती है एक इंटरेस्टिंग मशीन प्रोसेस, ब्लैंकिंग। और इसके बारे में जानने से पहले एक और गाना आपके लिए है, सो स्टे ट्यून्ड।

Welcome back, listeners. That was an energetic track from the film Dadak Zingat. You know, we were discussing about how coins were done minting and we were stuck with what is the process of blanking. You know, exactly this machine does the blanking process. Isme metal sheet se perfectly round pieces cut kiya jata hai. Inhe hum coin blankets keh sakte hain. अभी ये प्रॉपर कॉइन नहीं है, बस एक प्लेन गोल मेटल पीस है. यू नो, दिस इज़ द प्रोसेस वेयर द कॉइन्स आर मेड एंड इन दैट शीट यू मेक द प्रॉपर राउंड थिंग्स बिफोर यू नो इट गेट्स द प्रॉपर वैल्यू एंड एवरीथिंग. एंड उसके बाद ब्लैंक्स को स्पेशल मशीन से ट्रीट और पॉलिश किया जाता है ताकि उनका साइज और सरफेस एग्जैक्टली रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो. And then comes the star moment, coining. High pressure machines in blanks per design or inscriptions ko stamp karti hai. You might have seen there's a national emblem and sometimes various other national symbols printed on the coins with the value denomination and the year of printing, I mean year of minting of the coin. You know, ek side per Ashok Lion Capital, dusri side per denomination or other details. और फाइनली एक प्लेन मेटल डिस्क

बन जाता है एक प्रॉपर इंडियन सिक्का। उसके बाद इन सिक्कों की क्वालिटी चेकिंग, काउंटिंग और पैकेजिंग होती है। हर बैच को स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है बिफोर इट एंटर्स सर्कुलेशन। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कॉइन और करेंसी नोट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली सेम होती नहीं है। यू नो, करेंसी नोट्स इशू करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेजर रोल होता है, लेकिन कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। आरबीआई उन कॉइन्स को सर्कुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पॉकेट से 10 का सिक्का निकालता है, डोंट जस्ट थिंक ऑफ इट एज 10 रुपीज़। उस छोटे से कॉइन के पीछे डिज़ाइन, मेटल प्रोसेसिंग, प्रसेशन, मशीन्स, क्वालिटी चेक्स और एक प्रॉपर गवर्नमेंट मिंटिंग सिस्टम। मतलब पॉकेट में कॉइन छोटा है बट उसकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हाँ, अगली बार कॉइन को देखिए ज़रूर, शायद उसके डिज़ाइन को पहली बार थोड़ा डिफरेंटली नोटिस करेंगे। तो इसके साथ ही साथ एक और गाना, क्यूपे, स्टे ट्यून्ड।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपये तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपये से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपये या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपये प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है। संघर्ष कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 जबकि निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 23,200

Welcome back, listeners. Hope you enjoyed that song. That was Love You Zindagi from Dear Zindagi movie, sung by Amit Trivedi and Jasleen Kaur Roya. So that was a beautiful song, you know. But, you know, kabhi notice kiya hai, hamari life mein har cheez ke liye ek deadline hai. Office jana hai, kaam complete karna hai, messages ka reply dena hai, ghar ke kaam karne hain aur beech mein hum khud ke liye time nikalna भूल जाते हैं। हम फोन को तो चार्जिंग पे लगा देते हैं लेकिन खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। एक्चुअली लाइफ में हर वक्त कुछ ना कुछ अचीव करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी बस थोड़ा पॉज करना भी इम्पॉर्टेंट है। पॉज का मतलब ये नहीं है कि आप लेजी हैं। कभी अपना पसंदीदा काम कुछ करना, जैसे कि यू नो डूइंग दोज पॉटरी और सम आर्ट वर्क्स, और मे भी कुछ पसंदीदा गाना सुनना और थोड़ा सिंपल वॉक पर जाना, किसी फ्रेंड को कॉल करना या सिंपली 10 मिनट कुछ भी ना करना, यू नो इवन दैट्स अ लग्जरी दीज डेज बीइंग फ्री। और एक फनी थिंग पता है, हम जब फोन स्लो हो जाता है तो बोलते हैं अरे यार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, बट जब हम खुद मेंटली स्लो फील करते हैं तब हम रीस्टार्ट के बजाय और ज़्यादा काम करने लगते हैं। सो लाइफ में थोड़ा पॉज ज़रूर लीजिए, बिकॉज समटाइम्स मूविंग फॉरवर्ड का बेस्ट वे होता है थोड़ा सा रुक जाना। एंड आज का रिमाइंडर सिंपल है, लाइफ को सिर्फ रन मत कीजिए, कभी कभी उसे एंजॉय भी कीजिए। एंड उसके साथ एक और प्यारा सा गाना आ रहा, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन है विद आरजे दिव्या। एंड या मे बी पीपल डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आई विल रिपीट दैट अगेन। व्हाट इज दैट यूजलेस थिंग और हॉबी व्हिच एक्चुअली कैन बी यूजफुल? एंड यू नो आई कुड गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यू नो डूडलिंग एंड मंडला आर्ट, आई फील and many of them feel that it could be useless, but it's actually not. It's not any sort of time pass, but it improves creativity and observation. And many people think, you know, gardening, you know, plants se baat karna weird lagta hai, but it's calming and teaches patience. And even photography. Sir, photos lena nahi, observation and creativity bhi improve hota hai. And with that, reading random facts, kabhi lagta hai, iska kya fayda? Lekin general knowledge aur conversations mein kaam aata hai. You know, reading random facts and doing those all things. And even making your own DIYs and crafts. Purane saman se nahi cheeze banni. क्रिएटिविटी के साथ पैसे भी बचा सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई कुड गिव यू एज एन एग्जाम्पल। सो इफ यू वॉन्ट टू शेयर समथिंग, यू कैन कॉल ऑन 0402-323-0030 और 0402-323-4821 एंड 0402-970-4715। स्टे ट्यून्ड, हियर कम्स अनदर ब्यूटिफुल सॉन्ग।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: ఆకాశవాణి తిరుమల శ్రీవారి తాళకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా హంసవాహన సేవపై ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం వింటారు. వ్యాఖ్యాతలు డాక్టర్ ఎం ప్రశాంత్ శర్మ, డాక్టర్ పి వెంకట చలపతి. నిర్వహణ శ్రీ ఎం సుధాకర్ మోహన్, శ్రీ డి సాయి రఘునాథ్ చరణ్. సాంకేతిక సహకారం
1: స్టూడియో క్లాక్ లో సమయం 8 గంటలు కావస్తోంది. మరి కాసేపట్లో చీఫ్ ఫర్ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా జపాన్ లో జరుగుతున్న 20వ ఆసియా క్రీడలు 2026 ప్రసారం వింటారు. ఢిల్లీ నుంచి రిలే.
2: శతక్ పార్ కరేంగే బల్కి మెడల్స్ కే నంబర్స్ కో ఉస్సే భీ ఆగే లే జాయేంగే హమే ఇస్ బార్ సభీ ఖేలో మే న సిర్ఫ్ పదక్ బల్కి స్వర్ణిమ్ సఫలతా సబ్సే బడే ఖేల్ మంచ్ పర్ తిరంగా లహరానే ఔర్ పిచ్లే సారే రికార్డ్స్ కో తోడ్నే కే దృఢ సంకల్ప కే సాథ్ ముకాబ్లే కో తయార్ హే. 4 సాలో కి కఠిన తపస్యా ఔర్ కడీ చూర్ మెహనత్ సే నిక్లే పసీనే కి బూందో సే ఆచీ నాగోయా కి జమీన్ కో సీచా జాయేగా ఔర్ ఫిర్ ఉస్సే సోనే కో సీచా జాయేగా ఔర్ ఫిర్ ఉస్సే సోనే చాందీ ఔర్ కాంసే కే పదకో కి ఫసల్ లహలాయేగీ. ఇన్హీ ఉమ్మీదో ఔర్ ఆశాఓ కే సాథ్ ఆకాశవాణి కి తరఫ్ సే పేష్ హై విశేష శృంఖలా చీయర్ ఫార్ భారత్. आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पदकों की सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग, कुश्ती, बॉक्सिंग, तीरंदाजी और स्क्वाश की. इन खेलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, भारत की युवा महिला पहलवान सारिका मलिक और खेल पत्रकार अभिषेक रॉय. हमारे साथ सारिका मलिक मौजूद हैं तो सवालों की शुरुआत कुश्ती से ही करते हैं. सारिका, चाहे एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच एशियन गेम्स हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच ओलंपिक, कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें हमें पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है. पिछली बार एशियन गेम्स में हमारे पास 1 सिल्वर समेत कुल 6 पदक थे. अब खुद कई प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम के सदस्य रही हैं और अपने साथी खिलाड़ियों की प्रतिभा को अच्छी तरह से जानती हैं. इस बार कुश्ती में क्या उम्मीदें हैं?
3: इस बार कुश्ती से हमें पहले की तरह ही बहुत उम्मीदें हैं. भारत में कुश्ती खेल जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण खेल माना जाता है, बहुत ही फेमस खेल है. ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में हमेशा ये मेडल देता है. हर ओलंपिक्स में आप देख सकते हैं 2004 से कुश्ती ने मेडल दिए हैं. और एशियन गेम्स में भी हर साल 4 से 5 मेडल तो कम से कम कुश्ती देता ही है. इस बार भी हमारी जो टीम है वो बहुत ही शानदार तैयार हुई है, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स उसमें हैं. आप बात कर सकते हैं निशा दहिया की, जो कि आपने ओलंपिक्स में भी देखा था. उनको इंजरी जरूर हुई थी ओलंपिक्स में, लेकिन उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही शानदार था. आप बात कर सकते हैं सुजीत कलकल की, जो कि अभी फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे थे. बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट आप बोल सकते हैं, वो रेसलिंग में हैं और उनसे पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड ही लेके आएंगे. आप देख सकते हैं दीपक पूनिया, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं, और मानसी अहलावत है, मनीषा भनवाला है, प्रिया मलिक हैं जो कि 2 बार की जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हैं. तो टीम हमारी बहुत ही अच्छी है और हम हमेशा की तरह उनसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं.
2: तो अभिषेक, कुश्ती दल में होंगजू एशियन गेम्स के मेडलिस्ट दीपक पूनिया, अमन सहरावत और अंतिम पंघाल फिर से मौजूद हैं. आपको लगता है कि आची नागोया में गोल्ड मेडल का बैरियर टूटेगा और हमारे खाते में स्वर्णिम सफलता भी आएगी?
4: बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पहले भी मेडल इस प्लेटफॉर्म में ये जीत चुके हैं, तो इनको पता है कि किस तरह का कंपटीशन होगा, क्या लेवल है. और जहां तक अंतिम पंघाल का बात करें तो वो 2-टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है. उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, आई मीन पेरिस ओलंपिक्स में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया है, लगातार वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इंटरनेशनल लेवल पे. दीपक पुनिया एक नए वेट क्लास में आ रहे, वो 86 में थे, अभी इस बार वो ऊपर 97 में आ रहे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म में काम आएगा. सुनील कुमार जो ग्रीको रोमन में 87 में, वो भी काफी अच्छा खिलाड़ी है, वो भी मेडल जीत चुके थे लास्ट टाइम. तो ये

0: एक काफी एक्सपीरियंस और यंग टीम का कॉम्बिनेशन है रेसलिंग में।
1: सारिका, एशियन गेम्स से पहले पहलवानों की तैयारियों पर खास ध्यान दिया गया। उन्हें न सिर्फ एक्सपोजर के लिए बाहर भेजा गया, बल्कि विदेशी जमीन पर ट्रेनिंग भी दी गई और फॉरेनर कोच ने भी हमारे पहलवानों को ट्रेनिंग दी। इसका कितना फायदा इस बार मिलेगा?
2: बिल्कुल, इसका काफ़ी फ़ायदा आपको इस बार एशियन गेम्स में देखने को मिलेगा। मैं खुद नेशनल कैंप में रह रही हूँ और ट्रेनिंग कर रही हूँ नेशनल कैंप में। तो हमारे गर्ल्स रेसलिंग में फॉरेन कोच हैं, जापनीज कोच अकाइशी, जो कि बहुत टेक्निकल हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड स्टेज पे जापान जो है वो वुमेन्स में लीड करता है। आप वर्ल्ड चैंपियनशिप देख सकते हैं, आप ओलंपिक्स देख सकते हैं, तो जापान के 2 से 3 गोल्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो जापानीज कोच हमें उनकी टेक्टिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, कैसे उनके साथ कॉम्पीट करना है, क्या उनकी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या स्ट्रेटजी हमें लेके चलनी है, अपना ट्रेनिंग प्लान जैसे हमारा चेंज किया गया है। उनका मानना है कि जैसे बाउट्स अगर दिन में होती हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी दिन में ही होनी चाहिए, जो हमारी बाउट प्रैक्टिसेस होती हैं।
1: अच्छा,
2: स्पीड वर्क पे उन्होंने बहुत फोकस किया है, एंड्योरेंस पे। साथ ही हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर इयान बटलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। तो ऐसे ही फ्री स्टाइल में आप देख सकते हैं कोच शाको हैं। सेम अभी जो फ्री स्टाइल की टीम थी वो आर्मेनिया ट्रेनिंग के लिए गई थी, ट्रेनिंग कैंप था, बहुत अच्छा फॉरेन एक्सपोजर था। उसके बाद रशिया में उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला जिसमें उन्हें रशियन रेसलर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे रही, सुजीत कलकल ने वहाँ पे गोल्ड जीता, विकास कालीरमन ने ब्रॉन्ज जीता, और उनके साथ ही बहुत सारे इंडियन रेसलर्स को वहाँ पे फॉरेन एक्सपोजर मिला और प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। सेम अगर हम देखें तो ग्रीको रोमन की जो टीम है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। आप सुमित मलिक को देख सकते हैं, सुनील कुमार को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके साथ भी कोच गोगी जो हैं वो लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस जो हैं वो रेसलर्स की चल रही हैं।
1: अभिषेक, एशियन गेम्स में हमारा 15 सदस्यीय कुश्ती दल भाग लेने जा रहा है। इसमें पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सुजीत कलकल 65 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम, दीपक पूनिया 97 किलोग्राम, रजत रूहल 125 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल हैं। वहीं महिला फ्री स्टाइल में दीपांशी 50 किलोग्राम, अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम भार वर्ग में शिरकत करेंगी। ग्रीको रोमन शैली में सुमित दलाल 60 किलोग्राम, अमन बरोनिया 77 किलोग्राम, सुनील कुमार 87 किलोग्राम और नितेश सिवाच 97 किलोग्राम भार वर्ग में देश की चुनौती रखेंगे। लेकिन इतने पहलवानों की मौजूदगी में महिला दल की ज्यादा तगड़ी दावेदारी मानी जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं और वजह क्या है?
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और एक नया ब्रीड भी ऊपर आ रहा है। जैसे दीपांशी फोगाट 50 kg में है, 17 साल की है, उन्होंने ट्रायल्स में सबको सीजन्ड प्लेयर्स को हरा के एशियन गेम्स में अपनी दावेदारी पेश की है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हमें एले ओलंपिक्स भी देखना है, तो किस तरह से यंग ब्रीड हमारी परफॉर्मेंस कर रही है। तो अंतिम पंगाल तो है ही, निशा दहिया है, सीजन प्लेयर है, उनसे उम्मीद रहेगी। पर हमें यह भी देखना है कि ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, चाहे वो दीपांशी हो, मानसी अलावत हो, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे ये जीत के आ रहे हैं, तो एशियन गेम्स में इनको एक पास एक बहुत बड़ा मौका है कि अपने आप को जो है किस लेवल पे ये देखती है और आगे कैसे इस परफॉर्मेंस को लेके जाती है। मेंस खिलाड़ियों में मैं अमन शेरावत की बात स्पेशली करना चाहता हूं, क्योंकि उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पेरिस ओलंपिक्स में, जब रेसलिंग एक बुरे दौर से गुजर रहा था, कैंप नहीं हो रही थी, फिर भी वो मेडल लेके आए हमारे लिए और उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो अमन शेरावत के पास एक्सपीरियंस है, 57 kg लोअर वेट कैटेगरीज में हमेशा फ्री स्टाइल में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और सुजीत कलकल 65 kg एक ऐसे कैटेगरी में है जो कि बजरंग पुनिया का कैटेगरी कहा जाता है, और बजरंग पुनिया के बाद अगर ऐसा कोई रेसलर आया है जो इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो सुजीत कलकल है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका मैं मानता हूँ एशियन गेम्स में कि किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं।
1: एशियन गेम्स में कुश्ती में कंपटीशन का लेवल काफी तगड़ा होता है, और सारिका, आमतौर पर किन देशों की कठिन चुनौती होगी और उनके खिलाफ हमारी क्या रणनीति होगी?
2: बिल्कुल, एशिया को जो है वो कुश्ती का हब माना जाता है। एशिया में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको कुश्ती में देखने को मिलता है। एशियन नेशंस हैं जैसे जापान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये बहुत

0: बहुत ही तगड़े माने जाते हैं कुश्ती में, बहुत स्ट्रांग नेशंस हैं, इनकी जो टीम होती है वो काफी अच्छी होती है। आप मंगोलिया को भी ले सकते हैं, ये सारे देश काफी अच्छी टक्कर देते हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं 50 किलो में यूई सुसाकी आपको कॉम्पीट करती नजर आएंगी, जो कि कई बार की वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे ही हर एक वेट में 57 kg में आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन काफी अच्छा। 68 में भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंडर्स हैं, और 62 में भी मंगोलिया है, जापान है, 76 में किर्गिस्तान है। तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहेगा, और जो मेडल की दावेदारी है वो इंडियन प्लेयर्स की ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इंडिया की टीम मैं मानती हूँ कि अभी इन सब से ऊपर बढ़ के आ रही है। जापान को अगर कोई सबसे ज्यादा टक्कर दे सकता है तो वो अभी इंडिया की टीम है।
1: जी, और अभिषेक कुश्ती से अब शूटिंग की तरफ चलें तो निशाने लगाने के इस खेल में हमारी सबसे तगड़ी दावेदारी है। प्रतियोगिता की बात करें तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल, विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में इलावेनिल वलारिवान, सोनम उत्तम मस्कर, विदर्शा विनोद, मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार, रुद्रांश पाटिल, विमेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में आशी चौक से विदर्शा के विनोद, तिलोत्तमा सेन, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में केदारलिंग बी उचा गनवे, गौरव कमलजीत, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनिश बानवाला, विमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में ईशा सिंह, मनु भाकर, राही सरनोबत, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में केदारलिंग बी उचा गनवे, सुरुचि सिंह, मेन्स ट्रैप में किनान चेनाई, अवर रिजवी, शपथ भारद्वाज, विमेन्स ट्रैप में नीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, मेन्स स्कीट में अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान, और विमेन्स स्कीट में पारिनाज धालीवाल, राजा ढिल्लो, महेश्वरी चौहान जैसे 30 शूटर्स विभिन्न वर्गों में शामिल हैं। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से भरे इस दल में किन खास पर नजरें रखनी चाहिए?
2: बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने धर्मेंद्र जी। पहले तो यह बता दो कि शूटिंग एज ए स्पोर्ट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो। सबसे पहले हम लोग शूटर्स को हमारे देखते हैं कि ये कितने मेडल्स जीतेंगे। तो लास्ट टाइम भी जो हमारा 100 का छलांग हम लोगों ने मेडल टैली में पार किया था, उसमें शूटिंग का बहुत बड़ा एक योगदान था। 22 मेडल्स हम लोग लेके आए थे, उसमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। उन 7 गोल्ड मेडल्स में आप देखिए तो एथलेटिक्स जो था हमारा सबसे टॉप में था, 28 मेडल्स आए थे, उसके बाद शूटिंग का नंबर है। तो इस बार भी हमें 100 से पार करना है तो शूटिंग टीम को अच्छा करना होगा। और इस बार मुझे ज़्यादा होप्स इसलिए भी है क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि इस साइकिल में अगर आप देखेंगे तो पिछले एशियन गेम्स के बाद जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें हमने शूटिंग में काफ़ी अच्छा किया। मनु भाकर 2 मेडल लेके आई और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 में मेडल जीता, 3 मेडल्स हमारे आए शूटिंग में। उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ लास्ट ईयर उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमने इंडिविजुअल कैटेगरीज में मेडल्स जीते, ऐश्वर्या प्रताप तोमर, ईशा, एलाविनिल। तो ये सारे जाएंगे इस एशियन गेम्स में कैरिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल के जैसे प्लेटफॉर्म में इंडिविजुअल में मेडल जीता है। ये उम्मीद है हमें कि पिछले बार जितना 22 मेडल्स था उससे हम लोग ज्यादा जीतेंगे इस बार।
1: अगर हांगजो एशियन गेम्स 2023 में हमारे शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदक जीते नहीं थे बल्कि कह सकते हैं कि बटोरे थे, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 22 पदक जैसी आपने बात की भारत की झोली में आए थे। अभिषेक, इस बार पदकों की संख्या से आगे निकलना हमारे निशानाबाजों के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती होगी?
2: चुनौती तो है क्योंकि शूटिंग एशियन लेवल पे एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत स्ट्रांग कंटेंडर्स है। पिस्टल में साउथ कोरिया बहुत स्ट्रांग है, चाइनीज शूटर्स है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। बट हमारे शूटर्स कुछ कम नहीं है, हम लोगों ने प्रूव किया है। देखना यह है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में हम लोग कितने मेडल्स इस बार जीतते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जितने मेडल्स जीते थे वो ज्यादा मेडल्स टीम कैटेगरी में आए थे, तो टीम कैटेगरी ओलंपिक्स में नहीं है। इस बार हमारे शूटर्स का ये टारगेट है कि इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ज्यादा मेडल लाए ताकि उस तरह से हमारा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का ओलंपिक्स से क्वालिफिकेशन हो और फिर एले ओलंपिक्स का तक का टारगेट कर सके। तो यहां से हमारी जो है शुरू होती है एले ओलंपिक्स की प्रिपरेशन शूटर्स की। और बहुत सारे शूटर्स हैं जिनको पहला बार ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने के लिए। एक्चुअली मिक्स्ड है, नए प्लेयर्स काफी आए हैं और पुराने प्लेयर्स भी है, तो उम्मीद है काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
1: और सारिका, आप खुद युवा और देश की उभरती हुई पहलवान है और चोट की समस्या का सामना किया है, आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ स्टेमिना के इस गेम कुश्ती में पहलवानों के लिए फिटनेस बना

0: रखना कितना जरूरी होता है।
1: कुश्ती में फिटनेस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, ना सिर्फ कुश्ती में बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में। मोस्टली अगर हम बात करें तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, टाई कमांडो हो गया, जूडो हो गया, तो इनमें फिटनेस लेवल का बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। फिटनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपको, इसमें पावर भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। आपको बाउट लड़नी है कंटिन्यू कंटिन्यू, आपकी पूरी बॉडी की पावर लग रही है, आपको सांस भी चढ़ेंगे, आपका दम भी फटेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एक बहुत ही अच्छा फिटनेस लेवल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी अगर हम रेसलर्स की बात करें तो रेसलिंग में हमारे जो कोचेस हैं और साथ में हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच भी हम फेडरेशन ने दिया हुआ है, तो उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉपर हमारे पर ध्यान है कि हमारे फिटनेस लेवल है वो बनी रहे, डाइटिशियन हमारे साथ है, हमारी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस बनाए रखना, अगर आपके फिटनेस अच्छी है तो आपको इंजरीज के चांसेस भी कम होंगे।
0: अभिषेक, भारत की तीरंदाजी टीम की बात करें तो पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोम्बदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, महिला रिकर्व टीम में कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद, अंकिता भगत शामिल हैं। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु और महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपर्थी, प्रतिका प्रदीप का नाम शामिल है। कुछ दिन पहले धीरज बोम्बदेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बने। धीरज की इस कामयाबी से भारतीय कैंप का जोश कितना हाई होगा?
2: बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि जब एक आपका खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल जैसे प्लेटफॉर्म से जीत के आता है, जिसमें सिर्फ टॉप 8 शूटर्स आर्चर्स खेलते हैं, और वो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि एक हमारा आर्चर जाके इतने बड़े लेवल पे जीता है। और वहाँ से डायरेक्टली धीरज मेक्सिको से जापान पहुँच चुका है और ट्रेनिंग कर रहा है, और एक्सपीरियंस काफी है। पेरिस ओलंपिक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था धीरज का, तो धीरज से उम्मीद है कि वो टीम को आगे लेके चलेगा, क्योंकि इस बार का जो टीम है आर्चरी का वो काफी नया टीम है। 3 प्लेयर ही जो है लास्ट एशियन गेम्स से इस बार खेल रहे हैं, उसमें से धीरज है, ज्योति सुरेखा है कंपाउंड वुमेन में, अंकिता भगत है, बाकी सारे नए आर्चर्स हैं। और लास्ट टाइम का जो आर्चरी का हमारा परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, 9 मेडल्स हमारे आए थे, हम लोगों ने कंपाउंड में स्वीप कर गए थे हम लोग। इस बार इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आर्चरी में एलए क्वालिफिकेशन भी इस यहाँ से होगा, तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से बर्थ निकाल सके ओलंपिक्स का भी।
0: जी, और निशाने साधने के पारंपरिक खेल तीरंदाजी में पिछले एशियन गेम्स में भारत के धनुर्धरों ने 5 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते थे। टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लगता है इस बार हम उससे आगे निकलेंगे?
2: हमें आगे निकलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और कुछ नए भी है। ज्योति सुरेखा की अगर बात करें तो बहुत उनका एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम लोगों ने, ज्योति और ओजस ने लास्ट टाइम मिक्स्ड फॉर्मेट में कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता था, वो साउथ कोरिया की टीम को हराया था। इस बार उनके साथ साहिल जाधव है जो कि नए प्लेयर है, लेकिन वो काफ़ी टैलेंटेड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उनका गोल्ड मेडल है, और यही वो फॉर्मेट है जहाँ पे हमारा एले ओलंपिक से क्वालिफिकेशन है, तो उम्मीद है अगर उस तरह का हम लोग परफॉर्मेंस करें तो हमें एले ओलंपिक से कोटा भी मिल जाए। तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं आर्चरी के, क्योंकि 2-3 हैं, कि वो पूरा टीम को साथ में आगे लेके चले।
0: और सारी क्या खेलों के विकास के लिए नए भारत में जिस तरह से खेल मंत्रालय, साई और तमाम खेल संघ काम कर रहे हैं, उससे खिलाड़ियों के लिए कितना माहौल बेहतर हुआ है?
1: खिलाड़ियों के लिए माहौल काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं एंड स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी निकाली गई हैं। जैसे अगर हम खेलो इंडिया स्कीम की बात करें तो उससे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, टॉप स्कीम है उससे बेनिफिट मिल रहा है, ना सिर्फ गवर्नमेंट बट प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बच्चों को जो है, स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो है वो बहुत फ़ायदा मिल रहा है एंड जो कैंप वगैरह लग रहे हैं हमारे तो उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। हर तरह से रिकवरी, ट्रेनिंग, डाइट सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे से हमें काम आ रही हैं।
0: और अभिषेक, बॉक्सिंग का जब भी नाम आता है तो पदकों की हमारी आस बढ़ जाती है। इस बार बॉक्सिंग दल में पुरुष वर्ग में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, सुमित कुंडू 70 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम, नरेंद्र बेरवाल 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, प्रिया गंगा 60 किलोग्राम, परवीन हुडा 65 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में देश की झंडा बरदार होंगी।

0: इन नामों को सुनकर बेहद दमदार दावा नजर आ रहा है, आप क्या मानते हैं?
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इन बॉक्सिंग टीम की हमारी परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी अच्छी रही है, खास करके महिला टीम की जो 5 गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता। लेकिन एशियन गेम्स बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंज होगा, एशियन गेम्स में कंपटीशन और भी ज़्यादा होने वाला है। पर हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जैसे लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक मेडलिस्ट है, 75 किलो कैटेगरी में खेल रही है, लास्ट टाइम उन्होंने इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, तो उनसे उम्मीद काफ़ी होगी। प्रीति पवार का मैं नाम लेना चाहूँगा, 54 kg में वो काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। एशियन चैम्पियनशिप में अभी वो गोल्ड मेडल जीती है इस साल, तो ये सारा परफॉर्मेंसेस वहाँ पे जाके एशियन गेम्स में एक और बड़े मंच में देना, ये हमारी तैयारी दिखाएगी कि हम लोग कितना परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। वैसे ही प्रिया घनघस है, ये नए टैलेंट है, लेकिन इन्होंने भी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो हमारी महिला टीम काफ़ी अच्छा करते हुए एशियन गेम्स तक अभी तक कर रही है, उम्मीद है इनसे काफ़ी अच्छा उम्मीद रहेगा। मेंस टीम नई टीम है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, पर जादूमणि सिंह है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सचिन सिवाच एक्सपीरियंस्ड है उनके पास अगेन, और नरेंद्र बेरवाल लास्ट टाइम इन्होंने मेडल जीता था। उम्मीद हमारी रहेगी कि हालांकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है बॉक्सिंग में, कि वो लास्ट टाइम का जो हमारा आंकड़ा था 4 मेडल का, उससे आगे जा सके।
0: हांगझो में मुक्केबाजी में हमने लवलीना बोरगोहेन के 1 रजत समेत 5 पदक जीते थे। इनमें से 4 मेडल महिला मुक्केबाजों के नाम थे। अभिषेक वैसे तो दोनों वर्गों में पंच के एक से एक उस्ताद नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि महिला वर्ग में पदकों की हमारी ज्यादा तगड़ी और दमदार चुनौती है?
1: बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, वर्ल्ड कप्स जितने हो, उसमें हमारी जो वुमेन बॉक्सर्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और बहुत कंसिस्टेंटली से ये परफॉर्मेंस आ रहा है। सारे टॉप बॉक्सर्स को आप अगर देखें, चाहे वो चाइना की हो, कजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, इनको हरा रहे हैं हम लोग। प्रीति पवार ने भी इनको हराया है एशियन चैंपियनशिप का, जब गोल्ड मेडल जीता हो, जब एशियन टाइटल जीत के अगर आप जब एशियन गेम्स में जाते हो, तो कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होता है कि मैं ये इस लेवल पे जीत चुकी हूँ, तो यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा इनका कि एशियन चैंपियनशिप में हमारी टीम, महिला टीम ने काफ़ी अच्छा किया है, और एशियन गेम्स में जाके हमें रिपीट करना है वो परफॉर्मेंस।
0: सारिका, एशियन गेम्स से ठीक पहले भारतीय कुश्ती दल को तगड़ा झटका लगा। 3 भारतीय पुरुष पहलवान डोपिंग के चलते एशियन गेम्स में उतरने से पहले ही बाहर हो गए। इसका कितना मनोवैज्ञानिक असर बाकी के पहलवानों पर पड़ सकता है?
2: इसका काफी असर पड़ेगा रेसलिंग पे, खास करके प्लेयर्स पे। जैसे एक बहुत अच्छी टीम हमारी तैयार हो गई थी, और जो भी प्लेयर्स हमारे डोपिंग में फंसे हैं उनसे पूरी दावेदारी थी मेडल की। आप मुकुल दहिया को लगा सकते हैं, एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और उनको एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हम मान सकते थे। 86 kg में पूरे भारत को उनसे उम्मीदें थी। दीपांशु 130 kg भार वर्ग में जो कि खेलने वाले थे ग्रीको रोमन में, उन पे भी डोपिंग का बैन है। और दीपक ग्रीको रोमन के ही पहलवान हैं, उन पे भी बैन लगा है। तो एक बहुत बड़ा झटका भारतीय कुश्ती के लिए ये है। तो अभी उनका नाम तो रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि टाइमलाइन जो होती है एशियन गेम्स में जाने की, एंट्रीज भेजने की, वो बंद हो चुकी है। लेकिन जो हमारी टीम अभी बाकी बची है, हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि वो इन सारे मेडल्स को कवर करें।
0: जी, और अभिषेक, अब बात स्क्वाश की। टीम की बात करें तो एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में सूरज कुमार चंद पुरुष टीम और मिक्स डबल्स, वीर चोटरानी मेंस सिंगल्स और मेंस टीम, वेलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स मेंस टीम, अभय सिंह मेंस सिंगल्स और मेंस टीम में शामिल है। महिला वर्ग में युवा अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा के अनुभव के साथ साथ तन्वी खन्ना और शमीना रियाज की भी चुनौती होगी। इस गेम में हमारे खिलाड़ियों ने एशिया में अपनी दमदार चुनौती पेश की है, तो अनुभव और युवा जोश वाली ये टीम कितना कमाल कर सकती है?
1: बहुत कमाल कर सकती है, और मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अनाहत को देखे तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस साल, वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीती है अनाहत, और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और लाइक आर्चरी, स्क्वाश भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एले ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन स्पॉट भी होगा, तो वो उसके लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। हमारी मेंस टीम लास्ट टाइम गोल्ड जीती थी, और वही टीम इस बार भी उतरी है, तो वो एक्सपीरियंस भी है, तो उनसे भी हमें काफ़ी उम्मीद रहेगी कि वो फिर से गोल्ड लेके आए, तो ओवरऑल स्क्वाश में मुझे लगता है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। जोशना चिनप्पा जो कि बहुत ही एक सीजन प्लेयर है और इस लेवल पे काफ़ी मेडल्स हमें दे चुकी है, वो भी मिक्स टीम में है, तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा स्क्वाश से भी।
0: 2023 की बात करें तो भारत ने स्क्वाश में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य

0: पदक जीते थे। उस टीम के कई खिलाड़ी इस बार शामिल नहीं हैं। दूसरी तरफ अनाहत सिंह जैसी युवा प्रतिभा की अगुवाई में क्या भारत अपने मेडल्स के पिछले आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है?
1: कंपटीशन काफ़ी टफ है स्क्वॉश में, मलेशिया होगा, बाकी टीमें और भी होंगी, तो ये देखना पड़ेगा कितना हम लोग चैलेंज कर सकते हैं टॉप कॉम्पिटिटर्स को। बट इस लेवल पे जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अलग होता है कि आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशियन गेम्स में, तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टीम परफॉर्म करेगी, और अनाहत के ऊपर तो काफ़ी फोकस रहेगा कि वो कैसा करती है। अगर वो एक सिंगल्स यहाँ से बर्थ निकाल सकती है ओलंपिक्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए।
0: सारिका, दबाव की परिस्थितियों में एक पहलवान के लिए अपने जज्बातों पर काबू बनाए रखना कितना जरूरी होता है, और जब आप मुकाबले में पिछड़ रही हो तब स्टैंड में लहराता एक तिरंगा और समर्थकों का एक जोश, जो आवाज उठती है स्टैंड से, वो आपके अंदर कितनी स्फूर्ति भरती है?
2: खिलाड़ियों के लिए दबाव की स्थिति में अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दबाव में आके पिछड़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि मैं तो हार रहा हूँ, लेकिन तब आपको पीछे से शोर सुनाई देता है, चीयर सुनाई देता है, इंडिया इंडिया, तो वो आपके अंदर एक जोश लाता है कि नहीं, मुझे करना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए करना है। और तब आप वो इंडिया का कॉस्ट्यूम पहनकर मैट पे जाते हो या अपने रिंग में जाते हो, हर स्पोर्ट्स के इस पर्सन की फीलिंग सेम होती है, तो वो अपने लिए नहीं कॉम्पीट करता, वो अपने देश के लिए कॉम्पीट करता है। उसको ये होता है कि मेडल मेरा नहीं है, मेरा देश का है और मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है। तो प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, जो अपना माइंड सेट स्ट्रांग रखता है, वो हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है, हर एक सिचुएशन में जीत सकता है। और रेसलिंग स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे में ऐसा होता है कि लास्ट के 10 सेकंड में भी आप अगर स्कोर ले रहे हो तो आप जीत सकते हो, आपके पास ऑप्शन बचा होता है कि आप अटैक करके स्कोर ले सकते हो। और तब आपको पीछे से चीयर सुनाई देता है तो बहुत आपका मनोबल बढ़ाता है, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ।
0: जी, और आपने एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती दल की तो तमाम बातें कर ली, अब आपने भी देश के लिए कई प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया है, आपने आगे अपने करियर के लिए क्या लक्ष्य तय कर रखा है?
2: हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी यही सपना है कि ओलंपिक्स में जाना है, देश को रिप्रेजेंट करना है और देश के लिए मेडल लेकर आना है। तो मेन फोकस तो एलए ओलंपिक्स का ही रहेगा। मैं भी यही चाहूँगी कि मैं एलए ओलंपिक्स में जाऊँ और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊँ, गौरव बढ़ाऊँ और वहाँ से मेडल लेकर आऊँ।
0: और अभिषेक, चलते चलते एक सवाल कि क्या भारतीय दल आपको पदकों के मामले में पिछली बार से आगे निकलता दिखाई दे रहा है?
1: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन हुई है, आई थिंक काफ़ी सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया कि जिस तरह वहाँ पे हमें एकोमोडेशन मिलेगा क्रूज शिप में, कंटेनर्स में, हम लोगों ने हमारे साई सेंटर्स में, पटियाला में, बेंगलोर में एथलीट्स को उसी तरह का एकोमोडेशन दिया ताकि वो एकोमोडाइज कर जाए। बाहर हम लोग एथलीट्स को काफ़ी भेजा गया है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, जैसे कि सारिका ने बताया, फॉरेन कोचेज काफ़ी आए हैं, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हुआ है। तो ऐसा जब प्रिपरेशन होता है तो एथलीट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रिपरेशन तैयारी हम लोग करके जा रहे हैं तो कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अब सिर्फ वहां पे स्टेज में जाके हमें परफॉर्म करना है, मेडल जीतना है।
0: साथियों, एशियन गेम्स का मंच तैयार है, हमारे खिलाड़ी भी हर चुनौती को तोड़कर पोडियम तक पहुंचने की जोरदार तैयारी में है। उम्मीद है कि आईची नागोया में होंगझोंग में जीते पदकों का न सिर्फ आंकड़ा बढ़ेगा बल्कि मेडल का रंग भी और सुनहरा होगा। सारिका मलिक, आपको उज्जवल भविष्य की दुआ के साथ साथ स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।
0: और अभिषेक रॉय, आकाशवाणी को समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: फिलहाल चीयर फॉर भारत कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

हरफे ताबिंदा के बाद आप सुन सकेंगे मत सहल हमें जानो सिलसिले के तहत डॉक्टर अर्शिया जबीन से टॉक, उनवान होगा ब्रिज नारायण चकबस्त।

फिर पेश किया जाएगा पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से सजा प्रोग्राम, गीत सुरीले गाते जा। सामईन, आज इंटरनेशनल डे फॉर इन्वेंशनल कार्डियोलॉजी और डे ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द साउथ मनाया गया। हम आज के गीत सुरीले गाते जा में इन पर बात करेंगे, इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी क्या है और डे ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द साउथ क्यों मनाया जाता है, इसकी आपको पूरी जानकारी देंगे, साथ साथ सुरीले नगमे भी सुनाएंगे।

गीत सुरीले गाते जा के बाद जनाब नदीम अख्तर जैदी का प्याम शब पेश किया जाएगा और खूबसूरत से प्याम शब के साथ ही नैरंग का इख्तिताम होगा। तो सामीन, ये था आज पेश किए जाने वाले प्रोग्राम का खुलासा। आइए सुनते हैं जनाब नूरुद्दीन से हर्फ़े ताबिंदा।

इल्म सबसे बड़ी दौलत है। हम अक्सर दौलत को सोने चांदी, जायदाद और बैंक बैलेंस से जोड़ते हैं। बिलाशुबा ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा करती हैं, लेकिन क्या ये हकीकी और पायदार दौलत हैं? ज़रा गौर कीजिए। ये मादी चीज़ें एक लम्हे में ख़त्म हो सकती हैं। कुदरती आफात, मौशी बहरान या चोरी, ये सब कुछ हमारी मादी दौलत को खाक में मिला सकते हैं, लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई आफत तबाह नहीं कर सकती, और ना ही ये वक्त के साथ कम होती है, बल्कि ये तो बांटने से बढ़ती है। जितनी ज़्यादा हम इल्म को दूसरों के साथ बांटते हैं, उतना ही ये हमारे अंदर पुख्ता होता जाता है। इल्म इंसान को जहालत के अंधेरों से निकाल कर रोशनी की दुनिया में लाता है। ये हमें सही और गलत में तमीज़ करना सिखाता है। अच्छे

0: समईन जनाब नूरुद्दीन से हर्फ ताबंदा आप समात कर रहे थे। बेशक दोस्तों, इल्म एक ऐसी अनमोल दौलत है जो कि खर्च करने से कभी कम नहीं होती, और इल्म दुनिया का वाहिद ऐसा खजाना है जिसे जितना भी बांटा जाए ये उतना ही बढ़ता चला जाता है। कहा जाता है, माल की हिफाजत हमें खुद पढ़नी पड़ती है करनी पड़ती है, जबकि इल्म हमारी हिफाजत करता है।
1: दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। शायरी एक एहसास का नाम है जहां दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है। सामईन, इस बार भी हम लेकर आए हैं आपके लिए शानदार मुशायरा, तो सुनना न भूलें डॉक्टर फरीदुद्दीन सादिक की निजामत नवनकदा ये मुशायरा कल रात यानी 17 सितंबर को रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के 101.9 FM पर।
0: एक सौ एक अशारिया 9 MHz पर यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सभी सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। स्टूडियोज की घड़ी में 9:40 और

0: 33 सेकंड हो रहे हैं, अब वक्त हो चला है मत सहल हमें जानो का। सामईन मत सहल हमें जानो सिलसिले के तहत डॉक्टर अर्शिया जबीन से टॉक आप सुनेंगे, उनवान होगा ब्रिज नारायण चकबस्त। लीजिए समात फरमाइएगा।
1: हयात और शायरी। चकबस्त उर्दू अदब के चंद मशहूर व मारूफ शोरा में शुमार होते हैं। इनका पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त शिवपुरी है। वो कश्मीरी ब्राह्मण थे। चकबस्त इनकी उर्फियत थी, तखल्लुस नहीं था, लेकिन उर्दू अदब में इन्हें इसी नाम से खूब शोहरत मिली। चकबस्त के आबाव अजदाद का वतन कश्मीर था। इनके अजदाद 15वीं सदी ईस्वी में कश्मीर से हिजरत करके लखनऊ पहुँचे और यहीं सुकूनत अख्तियार की। इनके वालिद पंडित ओदत नारायण दत्त चकबस भी उर्दू शायरी का खासा ज़ौक़ रखते थे और यकीन तखल्लुस के साथ शायरी करते थे। इनकी ख़ानदानी जायदाद जब ख़त्म हो गई और माशी हालात ख़राब होने लगे, तो पंडित नारायण दत्त ने अपनी शरीक हयात को इनके मायके फैज़ाबाद भेजा और ख़ुद पटना मुलाजमत के सिलसिले में मुंतकिल हुए। चंद मुश्किलात के बाद तरक्की करते हुए वो डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फायज़ हुए। चकबस की विलादत अपने ननियाल में 19 जनवरी 1882 की शब मोहल्ले राठ हवेली शहर फैज़ाबाद में हुई। 1887 ईस्वी में अभी इनकी उम्र सिर्फ 5 बरस थी कि इनके वालिद का इंतकाल हुआ। इनकी वालदा ने अपने बच्चों की तालीम की गरज से अपने भाई पंडित लालता प्रसाद के साथ लखनऊ में क़याम किया, जो मुलाजमत के सिलसिले में कश्मीरी मोहल्ले में मुक़ीम थे। चकबस की इब्तदाई तालीम लखनऊ ही में हुई। 1895 ईस्वी में काजमीन स्कूल में इनका दाखिला हुआ, जहाँ से उन्होंने 1897 में मिडिल का इम्तिहान कामयाब किया। इसी ज़माने में इनके भाई महाराज नारायण चकबस्त लखनऊ म्यूनसिपल्टी में मुलाजिम हो गए। इसके बाद चकबस्त का दाखिला जुबली कॉलेज लखनऊ में करवाया गया। जुबली कॉलेज से उन्होंने 1900 ईस्वी में 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया। इसके बाद कैनिन कॉलेज से 1902 में FA का इम्तिहान कामयाब किया। एक साल तक वो अलील रहे, जिसकी वजह से 1903 में BA में दाखिला लिया गया और 1905 में कामयाबी हासिल की। इसके बाद चकबस ने क़ानून की तालीम की गरज से इलाहाबाद का रुख किया। वहाँ से 1907 में LLB का इम्तिहान पास किया। इसके बाद तजुर्बे की गरज से चकबस ने लखनऊ के एक अच्छे वकील शहनशाह हुसैन रिजवी के साथ काम करके प्रैक्टिस शुरू की। इस तरह बहुत कम मुद्दत में वकील की हैसियत से कामयाबी हासिल की। चकबस की पहली शादी लखनऊ में पृथ्वीनाथ नागो की साहेबजादी से हुई थी, जिससे इन्हें एक लड़का हुआ था। लेकिन लड़के की विलादत के दौरान इनकी पहली बीवी चल बसी। कुछ दिनों बाद ये लड़का भी इंतकाल कर गया। इसके बाद इनकी दूसरी शादी इलाहाबाद में सूरजनाथ आगा की लड़की खमिया देवी से हुई, जिनसे इन्हें कई औलादें हुईं, लेकिन एक लड़की जिंदा रही। चकबस 12 फरवरी 1926 को अपने एक मुकदमे के सिलसिले में राय बरेली गए थे। वो इस दिन अपने साथियों के साथ लखनऊ जाने वाली ट्रेन में सवार थे और अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे थे कि अचानक इन पर फालिज का हमला हुआ। डॉक्टर को बुलवाया गया। इनके भाई पंडित महाराज नारायण को लखनऊ से बुलवाया गया कि वो बहुत अलील हो गए हैं। भाई के इनसे मिलने से कबल ही इनका इंतकाल हो गया। इस तरह इनके जज्द खाकी को लखनऊ ले जाया गया। दूसरे दिन यानी 13 फरवरी 1926 को इनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। चकबस को बचपन ही से शायरी से लगाव था। शायरी का ज़ौक़ इन्हें विरसे में मिला था। इनके वालिद खुद एक अच्छे शायर थे, चुनाचे कम उम्र ही से इनकी शायराना सलाहियतें उभर कर आने लगी। इस सिलसिले में डॉक्टर अफजाल हुसैन ने एक वाकया रकम किया है, जिन्होंने इनके शरीक हयात खमिया देवी से अक्स किया था। चुनाचे वो फरमाते हैं, अभी 8-9 बरस की उम्र थी कि एक रोज़ अपने कोठे पर खड़े थे, सामने नवाब वजीर हसन साहब कबूतर उड़ा रहे थे कि इतने में किसी और का एक कबूतर नवाब साहब के कबूतरों के झुंड में शामिल होकर घर में आ गया। वजीर हसन ने फौरन कबूतर पकड़ लिया, फिर इसके परों में गिरह लगा कर जैसे ही इसको छोड़ा, नामालूम कैसे गिरह खुल गई और कबूतर उड़ गया। नवाब साहब देखते के देखते रह गए। चकबस ने जो इस तमाम वाक़े को देख रहे थे, फौरन एक शेर कहा, तड़प कर तोड़ डाले बंद बाजू के कबूतर ने, बहुत बांधा था कस कर एक पर को दूसरे पर से। इस तरह शायरी का ज़ौक बढ़ता गया और उन्होंने बाकायदा शेर लिखना शुरू किया। कहा जाता है कि पंडित बिशन नारायण दर अबर से ग़ुरबत की वजह से इनकी शायरी को जिला मिली। अबर ही ने इन्हें अपने उस्ताद हकीम लखनवी के हवाले किया, जो अमीर मिनाई के उस्ताद असीर लखनवी के फर्जंद थे। चकबस ने इब्तदा में इनसे इसलाह ली। इनके इंतकाल के बाद इनके छोटे भाई अफजलुद्दौला से अपने कलाम पर इसलाह लेने लगे।

अफजल उद्दौला अफजल उर्फ छोटे भैया ने इनके शायराना कमाल को देखते हुए जल्द ही इन्हें इसलाह से आज़ाद कर दिया था। चकबस ने 1904 में कश्मीरी पंडितों की इसलाह की गरज से एक क्लब कश्मीर यंग मैन एसोसिएशन के नाम से क़ायम किया और साथ में एक लाइब्रेरी बहार लाइब्रेरी के नाम से क़ायम की। इस क्लब में इसके मेंबर शाम के वक्त रोज़ाना जमा हुआ करते थे, जहां अखबारात पढ़े जाते थे और किसी मेंबर को कोई मुश्किल दरपेश हो तो इसको दूर करने की कोशिश की जाती। हर हफ्ता एक जलसा होता, इसके लिए एक मजमून पहले से तैयार कर लिया जाता था। चकबस इस जलसे में बराबर शरीक रहते और मुख्तलिफ मसाइल पर ज़खीरें करते। वो कश्मीरी पंडितों की ज़िंदगी के हर शोबे में इसलाह की कोशिश करते थे। चकबस ने मजहबी मामलों में भी कई मसाइल पर इसलाह की कोशिश की, लेकिन इसकी मुखालफत भी की गई। हालांकि चकबस मजहबी मामलों में तासुब परस इंसान नहीं थे, वो हिंदू मुस्लिम इतिहाद के खायल थे और इंसान दोस्ती और भाईचारगी के खायल थे। इनकी ज़िंदगी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार थी। इसी सिलसिले में इनका दीवान सुबह वतन और इनका अदबी रिसाला सुबह उम्मीद अहमियत रखता है। रिसाले सुबह उम्मीद के इजरा का मकसद इस्लाही था। इस रिसाले के ज़रिए वो अपने ख्याल दूसरों तक पहुँचाना चाहते थे, इसके अलावा अपने अदबी ज़ौक की तकमील करना चाहते थे। ये रिसाला 3 साल की मुद्दत तक निकाल कर इनकी मसरूफियत की वजह से बंद हो गया। 1904 में चकबस ने बीए की तकमील के दौरान एक हुजिया खसीदा हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन से एक झपट के उनवान से लिखी। एक तवील नज्म है। इस नज्म में उन्होंने हिंदुस्तान से अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए कर्जन को तंज का निशाना बनाया है। मसलन चंद शेर देखिए। मुँह दिखाना तुझे वाजिब नहीं कलकत्ता में, अब मुनासिब तेरे रहने के लिए है चनहट। बस तेरा चल न सका खहत व वबा से कुछ, शहर वीरान है आबाद हुए है मरघट। यही इकरार यही खौल यही वादा था, वो सुखनसाज दगाबाज फसूंगर नटखट। काउंसिल के जो तेरे मेंबर सरकारी हैं, वो भी कम वक्त हैं चोर के साथी गिरगिट। याद रख हशर तलक भी न तुझे भूलेगी, गोखले की वो छथाड़ और मेहता की डपट। चकबस की उम्र इस वक्त सिर्फ 22 साल की थी। 22 बरस की उम्र में इस नौजवान शायर ने ऐसी उम्दा सियासी नज्म लिखी थी जिससे इनकी हुब्बुल वतनी और शायराना सलाहियतों का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस नज्म के हर शेर से इनकी हुब्बुल वतनी टपकती है। चंद और शेर मुलाहजा हूँ। इस खा के दिल नशी से चश्मे हुए वो जारी, चीन व अरब में जिनसे होती थी आबियारी। सारे जहाँ पे जब था वहशत का अब्र तारी, चश्म चिराग आलम थी सर जमी हमारी। शम अदब न थी जब यूनान की अंजुमन में, ताबा था महरे दानिश इस वादिय कोहन में। चकबस ने कई नज़में लिखीं जिससे इनकी हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती के जज्बात की तर्जुमानी होती है। इनकी नज़मों में कौमी मुसद्दस, खाक हिंद, वतन का राग, हमारा वतन, दिल से प्यारा वतन, वतन को हम, वतन हम को मुबारक, रामायण का एक सीन, आवाज़ कौम, फरियाद कौम और आसिफुद्दौला का इमाम बड़ा वगैरह काबिल ज़िक्र नज़में हैं। 1914 में हिंदुस्तान में जब पहली जंग अजीम हुई, इसमें हिंदुस्तान को शदीद जान व माल का नुकसान उठाना पड़ा था। जब हिंदुस्तानी लीडरों को इस नुकसान का इल्म हुआ तो उन्होंने खुद मुख्तार हुकूमत को हासिल करने का इरादा किया। डॉक्टर एनी बेसेंट ने जब होम रूल का मुतालबा पेश किया तो सारे हिंदुस्तानी लीडरों ने इसकी हिमायत की। चकबस ने इस मौके पर कई नज़में लिखीं। नज़्म हम होंगे ऐश होगा और होम रूल होगा, आवाज़ कौम और वतन का राग इस सिलसिले में अहमियत रखती हैं। इनकी नज़्म वतन का राग का ये शेर मुलाहजा हो जो चकबस की हुब्बुल वतनी और आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने का सबूत फराहम करता है। तल्ब फजूल है कांटे की फूल के बदले, तल्ब फजूल है कांटे की फूल के बदले, न लें बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। चकबस के कलाम पर वतनियत का रंग गालिब है, लेकिन इनका आज़ादी और वतनियत का तस्वुर वही है जो इस वक्त तकरीबन हर वतन परस्त का था, यानी बरतानिया के साये में रहकर होम रूल हासिल करना। चकबस के दिल में कौम का दर्द था। वो अपने हम वतनों के लिए खिदमत का जज्बा रखते थे। यही वजह है कि वो अपने वतन से अपनी वफादारी और मोहब्बत व वाबस्तगी का सबूत अपनी नज़मों के ज़रिए फराहम करते हैं। दरअसल चकबस की तबीयत और मिजाज ही ऐसा था कि वो दूसरों का कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे। वो जिन से मिलते बिला तफरीक रंग व नस्ल, मज़हब व मिल्लत मिलते और नहायत ही खलूस व अखलाक के साथ पेश आते थे। उन्होंने खुद अपने एक ख़त में इसका तस्करा किया है जिससे इनकी शख्सियत पर रोशनी पड़ती है। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मेरे कलम से एक फ़िक्रा भी ऐसा ना निकलेगा जिससे किसी बंदे खुदा की तौहीन हो। इस बयान से इनकी शख्सियत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चकबस की शख्सियत में सच कहने की हिम्मत और हौसला भी था। वो निडर व बेबाक शायर थे। वो अपने ख्यालात को निहायत

है सर बाली पे, क्या हंगामा महशर हुआ। नारे हाय दर्द ये कैसे हैं, ये मातम है क्या, चाक है किसका, गरेबा कौन है सर धुन रहा। तड़पता कौन दिल जीने से, किसका सैर है, बाल किसने लाश पर खोले हैं, क्या अंधेर है। लीडरों की वफात पर कहे गए मरासी में कौमी अलमे के साथ ज़ाती अलमे के जज्बात की भी तस्वीर दिखाई देती है। मसलन गोखले की वफात पर उन्होंने बड़ी उम्दा नज़्म कही है, चंद शेर इस सिलसिले में मुलाहजा कीजिए। अजल के दाम में आना है यूं तो आलम को, मगर ये दिल नहीं तैयार तेरे मातम को। पहाड़ कहते हैं दुनिया में ऐसे ही गम को, मिटा के तुझको फलक ने मिटा दिया हमको। जनाजा हिंद का घर से तेरे निकलता है, सुहाग कौम का तेरी चिता में जलता है। फिर से बोलूं, सुहाग कौम का तेरी चिता में जलता है। चकबस की शायरी में इस तरह की बेशुमार मिसालें मिलेंगी जहां ज़ाती जज्बात की बड़ी उम्दा तस्वीर कशी की गई है। गरस इन नज़मों में इनके दिली जज्बात व कैफियात और तजुर्बात व मुशाहदात की बेहतरीन नक्कासी की गई है। चकबस ने सिर्फ नज़में ही नहीं कही है बल्कि गज़ल गोई में भी तबाह आजमाई की है। इनके यहाँ तकरीबन 50 के करीब नज़में मिलती है। इन गज़लों में हुस्न इश्क के रिवायती मौजूआत के पहलू ब पहलू असरी मौजूआत भी मिलते हैं। उन्होंने नज़मों ही की तरह अपनी गज़लों में अपने अहद की रूह को समोया है। सियासी, समाजी, माशी व तहजीबी तकरीबन हर तरह के मजामीन इनके यहाँ मिलते हैं। चकबस की गज़लें ज़ाहरी और मानवी खूबियों के अतबार से अहमियत की हामिल है। चकबस अपनी गज़लिया शायरी में आतिश, गालिब और हाली से मुतासिर नज़र आते हैं। आतिश किसी मुरसा साजी और जमालियती एहसास इनकी गज़लों का नुमाया वस्फ है। इनकी गज़लों में लखनऊ की मामला बंदी और खारजियत का एहसास नहीं होता, वो इस्लाही जहन रखते हैं। यही वजह है कि इनकी गज़लें तसन्नो, बनावट और मामला बंदी से खाली हैं। उन्होंने गज़ल के बांगपन का न सिर्फ ख्याल रखा बल्कि ज़बान व बयान के हुस्न और अपनी फ़नकाराना खूबियों के ज़रिए अपनी गज़ल के हुस्न को दोबाला कर दिया। गालिब का असर इनकी गज़लों में दिखाई देता है, खुसूसन गालिब की गज़लों की असर अंगेज़ी की कैफियत इनके यहाँ वाज़े तौर पर दिखाई देती है। मसलन चंद शेर मुलाहजा कीजिए। दर्द दिल पास वफा जज्ब ईमां होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज़ा का परेशान होना। हमको मंजूर है ऐ दीदे वहदत आगी, एक गुंचे में तमाशाए गुलिस्तान होना। दुख्तर हुस्न पे महरे यद खुदरत समझो, फूल का खाक के तोदे से नुमाया होना। चकबस के यहाँ सियासी और समाजी मौजूआत पर अक्सर गज़लें मिलती हैं। इनका दिल वतन की मोहब्बत और हुब्बे कौमी के जज्बे से सरशार था। यही वजह है कि इनकी गज़लें जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार दिखाई देती हैं चूँकि वो अहद ही ऐसा था जहाँ मुल्क ग़ुलामी की जंजीरों में क़ैद था और हर अदीब व शायर इन बेड़ियों से आज़ाद होने को अपना अव्वलीन मकसद तसव्वुर कर रहा था। चकबस अपने अहद के इन बदलते हालात और एहसास से वाकिफ़ थे। वो एक वकील थे, बावजूद इसके उन्होंने सियासत और समाजी असलाहत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसी का नतीजा था कि इनकी गज़लें ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के जोश और वलवले से लबरेज नज़र आती हैं। चंद शेर मुलाहजा हूँ। ज़ुबान को बंद करें या मुझे असीर करें, मेरे ख्याल को बेड़ी पहना नहीं सकते। चिराग कौम का रोशन है अर्श पे दिल के, इसे हवा के फरिश्ते बुझा नहीं सकते। फना नहीं है मोहब्बत के रंग व बू के लिए, बहार आलम फ़ानी रहे रहे ना रहे। जुनून हुब्बे वतन का मज़ा शबाब में है। उन्होंने अपने हम वतनों की गैरत को भी अपनी गज़लों में बेदार करने की कोशिश की है, जो सच्चा जज्बे हुब्बुल वतनी नहीं रखते थे। चुनाचे ऐसे लोगों से मुखातिब होते हुए वो फरमाते हैं, कमाल बुजदिली है ख्वार होना अपनी आँखों में, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता। उभरने ही नहीं देती यहाँ बेमायगी दिल की, नहीं तो कौन खतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। कुछ ऐसा पास गैरत ही उठ गया इस अहद पुरफन में, के जेवर हो गया है तौख गुलामी अपनी गर्दन में। शजर सकते में है खामोश है बुलबुल नशेमन में, सुधारा काफिला फूलों का सन्नाटा है गुलशन में। ऐसी कई मिसालें हैं जो इनके सच्चे जज्बात व कैफियात की अक्कासी करती हैं। सियासी व समाजी मसाइल में भी ऐसी रची हुई कैफियत जिस फनकारी से वो पैदा करते थे, ये इन्हीं का हिस्सा है।

अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंटा भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो। एक सौ एक अशारिया नौ मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सभी सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। स्टूडियोज की घड़ी में 10:04 और 18 सेकंड्स हो रहे हैं। समय आज इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मनाया गया। गीत सुरीले गाते जा में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। आपको बता दें कि दुनिया भर में हर साल 16 सितंबर को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद दिल की बीमारियों के इलाज में जदीद तरीन तिब्बी तकनीक यानी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की अहमियत को उजागर करना और लोगों में दिल की सेहत के हवाले से शऊर बेदार करना है। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने सितंबर साल 2022 में बाकायदा तौर पर इस दिन को हर साल मनाने की करारदाद मंजूर की थी। इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम आपको और भी बताएंगे और साथ साथ फिल्मी गीत भी सुनाएंगे। तो अब वक्त हो चला है एक प्यारे से नगमे का।

समीन आप सभी सुन रहे हैं गीत सुरीले गाते जा, और आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पर, साथ साथ फिल्मी गीत भी आप सुन रहे हैं। अभी अभी जो गाना आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म वापस से, गीत को आवाज़ दी थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। समय जैसा कि हमने आपको बताया, 16 सितंबर की तारीख दिल के इलाज की तारीख में एक संगमेल की हैसियत रखती है। 16 सितंबर सन 1977 को मशहूर जर्मन मालिज डॉक्टर एंड्रियास ग्रुंटिग्स ने दुनिया की पहली क्रोनरी एंजियोप्लास्टी कामयाबी से अंजाम दी। उन्होंने एक छोटे गुब्बारे की मदद से शरीयान को खोलकर दिल के मरीज की जान बचाई थी, और उस कामयाब तजुर्बे ने अमराज कल्ब के इलाज में एक नए इनकलाब की बुनियाद रखी। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को यानी 16 सितंबर को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के नाम किया है।

फिल्म सौदागर का गाना आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी कविता कृष्णमूर्ति, सुखविंदर सिंह और मनहर उदास की। गीतकार थे आनंद बख्शी और म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर और आप सभी सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग अपनी रेडियो दोस्त आयशा बतुल अफशा के संग। सामईन गीत सुरीले गाते जाओ में आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पर। आपको बता दें कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी अमराज कल्ब की एक ऐसी जदीद शाख है जिसमें दिल की बंद या तंग शरियानों का इलाज बगैर किसी बड़ी सर्जरी या सीना चाक किए किया जाता है। इसके तहत कैथेटर नामी एक बारीक ट्यूब को हाथ या फिर टांग की रग के जरिए दिल तक पहुंचाया जाता है और इसकी मदद से दिल की शरियानों में ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है। गुब्बारे या स्टंट की मदद से बंद शरियानों को खोलकर खून की रवानी को बहाल करने में भी मदद मिलती है। इतना ही नहीं, दिल के खराब वॉल को बगैर खोले ही सर्जरी भी की जा सकती है। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का आलमी दिन मनाने के चंद अहम मकासद कुछ इस तरह से हैं। पहला तो यह है कि लोगों को दिल की बीमारियों, उनकी अलामत और बरवक्त इलाज की अहमियत से वाकिफ कराना। दुनिया भर के पसमानदा इलाकों में रहने वाले मरीजों तक दिल के जदीद और सस्ते इलाज की रसाई को मुमकिन बनाना। तिब्बी माहरीन की हौसला अफजाई, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और तिब्बी अमले की खिदमात को सराहना जो दिन रात मरीजों की जानें बचाते हैं। लोगों को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की सिमत रागिब करना ताकि दिल की बीमारियों से बचा जा सके। सामईन, इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा।

राम तेरी गंगा मैली फिल्म से लिया गया गाना आप सुन रहे थे। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। म्यूजिक डायरेक्टर रविंदर जैन थे। गीतकार थे हसरत जयपुरी। सामईन आप सभी सुन रहे हैं गीत सुरीले गाते जा और हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पर। टीबी माहिरीन का कहना है कि अगरचे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी ने दिल के मरीजों की जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन बीमारी से बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए मतवाजन और सेहत बख्श गजा का इस्तेमाल जरूरी है। चिकनाई और नमक से परहेज लाजमी है। रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलने या फिर वर्जिश करने का मशवरा दिया गया है। सिगरेट नोशी और तंबाकू के इस्तेमाल से मुकम्मल इज्तनाब किया जाना चाहिए। जहनी तनाव को यानी स्ट्रेस को कम करने के लिए मुस्बित सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। इतना ही नहीं, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का भी बाकायदगी से मुआयना करवाना चाहिए। सामईन, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी ने बिलाशुबा मेडिकल साइंस की दुनिया में लाखों इंसानों को नई जिंदगी दी है। दिल के दौरे के दौरान फौरन इलाज को मुमकिन बनाया है और 16 सितंबर का ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपनी दिल की सेहत का ख्याल रखें और मेडिकल साइंसेज की इन जदीद नेमतों की कदर करते हुए एक सेहतमंद मुआशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करें।

दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। शायरी एक एहसास का नाम है जहां दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है। सामईन, इस बार भी हम लेकर आए हैं आपके लिए शानदार मुशायरा, तो सुनना न भूलें डॉक्टर फरीदुद्दीन सादिक की निजामत नवनकदा ये मुशायरा कल रात यानी 17 सितंबर को रात 9:30 बजे।

0: सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के 101.9 एफएम पर।
1: एक सौ एक अशारिया नौ मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी हैदराबाद है, आप सभी सुन रहे हैं और तो प्रोग्राम नैरंग बज़्म सजी है गीत सुरीले गाते जा से। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पर। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द साउथ के बारे में। सामईन, हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद पायदार तरक्की के फ़रोग और तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए मौाक़े को मुस्तहकम करने में साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत की अहमियत को उजागर करना है। तलबा, मुहक़्क़ीन, कारोबारी अफराद और नौजवान पेशावर अफराद के लिए ये दिन इस पैगाम को वाज़ह करता है कि इल्म और टेक्नोलॉजी तक रसाई एक ज़्यादा जामे माशी और समाजी तरक्की की राह हमवार कर सकती है। आपको बता दें कि अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 9 जनवरी 2024 को एक करारदाद के ज़रिए बाज़ाब्ता तौर पर इसे मंजूर किया। 15 और 16 सितंबर को साल 2023 में हवाना यानी क्यूबा में होने वाले चीन के सरबराही इजलास की करारदाद के बाद इस तारीख का यानी 16 सितंबर का इंतखाब किया गया। ये दिन क्यों अहम है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

समय ने आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाते जाओ। स्टूडियोज की घड़ी में 10:36 हो रहे हैं। अभी अभी जो गाना आप सुन रहे थे उसे हमने लिया था फिल्म जंगली से। आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीतकार थे हसरत जयपुरी, मौसीकार थे शंकर जयकिशन। सामईन आपको एक बार फिर याद दिला दें कि हम गीत सुरीले गाते जा के तहत बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर साउथ, जैसे कि हमने आपको बताया कि हर साल 16

समय आपको एक बार फिर याद दिला दें कि हम गीत सुरीले गाते जा के तहत बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर साउथ। जैसे कि हमने आपको बताया कि हर साल 16 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। आपको ये बता दें कि आज का दिन क्यों अहम है। साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम, सेहत, माहौलियाती तब्दीली, पैदावार और डिजिटल खिदमात समेत ज़िंदगी के हर शोबे पे असरअंदाज हो रही है। ताहम तरक्की पजीर ममालिक में तहकीक के बुनियादी ढांचे, टेक्नोलॉजी फंडिंग और साइंसी सलाहियतों तक रसाई अब भी अदम मसावात का शिकार है। ये दिन इस बात पर तवज्जो मरकूज करता है कि तरक्की पजीर खितों में मजबूत साइंसी निज़ाम बनाए जाएं, ताकि वो महज दूसरी जगहों पर तैयार करदा टेक्नोलॉजी को अपनाने के बजाय मुकामी ज़रूरत के मुताबिक हल तलाश करें, तहकीक करें और तख्लीक कर सकें।

फिल्म यादों की बारात से लिया गया गाना आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। म्यूज़िक डायरेक्टर आर डी बर्मन थे, गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। समय आज का दिन तलबा के लिए काफ़ी अहमियत रखता है, ख़ास तौर पर स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के तलबा के लिए। रिसर्च से वाबस्ता तलबा और मसनवी जहानत के हवाले से भी आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। और तलबा जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी या फिर मसनवी जहानत से जुड़े हैं या फिर रिसर्च से वाबस्ता हैं, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना हिस्सा डाल सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी सीख कर मसनवी जहानत, प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स या डेटा साइंस जैसे शोबों को तलाश किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तलबा मुकामी मसाइल का अमली हल भी तलाश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रिसर्च, इंटर्नशिप्स, फेलोशिप्स और मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेकर तहकीक कर सकते हैं। आलमी डेवलपर्स के साथ इश्तराक करके तकनीकी तजुर्बा भी हासिल किया जा सकता है।

0: फिल्म तीसरी मंजिल से लिया गया गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन थे और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी।
1: दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। शायरी एक एहसास का नाम है जहां दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है। सामईन, इस बार भी हम लेकर आए हैं आपके लिए शानदार मुशायरा, तो सुनना न भूलें डॉक्टर फरीदुद्दीन सादिक की निजामत नवनकदा ये मुशायरा कल रात यानी 17 सितंबर को रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के 101.9 FM पर।
0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर और आप सभी सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नया रंग अपनी रेडियो दोस्त आयशा बतुल अफशान के संग। समय आज यानी 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द साउथ मनाया गया। जुनूबी दुनिया के लिए साइंस टेक्नोलॉजी और जिद्दत का आलमी दिन इस बात की याद दहानी है कि तरक्की पजीर ममालिक महज टेक्नोलॉजी के सारिफ ही नहीं है बल्कि मुनासिब तालीम, तहकीक, सरमायाकारी और ताउन के जरिए वो खुद जिद्दत तराजी का एक बड़ा मरकज बन सकते हैं। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि साइंस इल्म पैदा करती है, टेक्नोलॉजी उस इल्म को सीखने में मदद करती है और जिद्दत यानी इनोवेशन उस हल को अमली असरात में तब्दील करने में हमारी मदद करती है।

1942 ए लव स्टोरी फिल्म से लिया गया गाना आपने सुना, आवाज थी कुमार सानू की, म्यूजिक डायरेक्टर थे राहुल देव बर्मन और गीतकार थे जावेद अख्तर। समयन, इसी गीत के साथ ही सुरीले गीतों से सजा प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा अब यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आज आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। लीजिए समाप्त फरमाइए बज़्म नैरंग की आखिरी पेशकश, सुनिएगा जनाब नदीम अख्तर जैदी से पयाम-ए-शब।

कुछ इतनी रोशनी में थे चेहरों के आईने, दिल उसको ढूंढता था जिसे जानता न था। जिंदगी में हर चमकती हुई चीज हकीकत नहीं होती, इंसान अक्सर खूबसूरत चेहरों, जाहिरी कामयाबियों और दुनिया की चकाचौंध में गुम हो जाता है, लेकिन दिल को हकीकी सुकून सिर्फ सच्चाई, इखलास, मोहब्बत और अल्लाह की याद से मिलता है। इसीलिए जाहिरी हुस्न से मुतासिर होने के बजाय बातिन की पाकीजगी और किरदार की खूबसूरती को तलाश करना चाहिए। जाहिरी चमक दमक हमेशा हकीकत की आईनादार नहीं होती। दिल की असल प्यास रूहानी सुकून और सच्ची मोहब्बत से बुझती है। इंसान को लोगों के चेहरों से ज्यादा उनके किरदार को पहचानना चाहिए। अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया की रौनक नहीं बल्कि हकीकत और नेकी की तलाश होना चाहिए। जो दिल सिर्फ जाहिरी रोशनी के पीछे भागता है वो अक्सर हकीकत से दूर रह जाता है। असल कामयाबी ये है कि इंसान किरदार, इखलास और हक की रोशनी को पहचाने, क्योंकि यही रोशनी दिल को दायमी सुकून अता करती है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगा हर्ट्स पर। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आप सुन सकेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार जो दिल्ली से नशर किए जाएंगे।

0: ಕನಕ ಎಫ್ ಎಂ ರೇನ್ಬೋ ಪರ್ ಅಬ್ ಸುನಿಯೆ ಇಸ್ ಘಂಟೆ ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಚಾರ.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है. श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है. नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया. उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर पर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है. बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया. प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे. 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा.

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सऊदी अरब पर हमले में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the Semiconductor Roundtable with leading global CEOs in New Delhi today. Prime Minister called for greater industry participation in scaling, innovation and emerging technologies such as artificial intelligence, AI and quantum computing. Mr. Modi reiterated the government's commitment to a predictable and responsive policy environment while emphasizing that policies must evolve in line with technological advancements and industry requirements. The roundtable was held ahead of the inauguration of the 5th edition of Semicon India by Prime Minister Modi in New Delhi tomorrow. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund organization from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while addressing the media after the Cabinet meeting in New Delhi today. He said the decision is expected to benefit over 50

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह सिद्धार्थ कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
2: नमस्कार प्राची गुड इवनिंग अर्जुन
0: गुड इवनिंग सर
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां
0: Benchmark domestic stock market indices rise, Sensex gains over 300 points, Nifty settles at 23,218. New Zealand passes legislation to implement free trade agreement with India, and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त

0: सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक बढ़ा, निफ्टी 23,218 पर स्थिर हुआ। न्यूजीलैंड ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने के लिए कानून पारित किया और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें घटी।
1: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: आइए श्रोताओं, बिना विलंब किए जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग आधे प्रतिशत की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 333 अंक बढ़कर 74,336 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 99 अंक की बढ़त के साथ 23,218 पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.2% की गिरावट आई। इससे पहले अमरीकी बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुले और पूरे सत्र के दौरान सीमित दायरे में कारोबार करते रहे।
1: Benchmark domestic equity indices ended over 0.4% higher today. Sensex gained 333 points to close at 74,336. Nifty added 99 points to settle at 23,218. In the broader market on the NSE, the Nifty Mid-Cap 100 index ended on a flat note, while the Nifty Small-Cap 100 index dropped 0.2%. Earlier, the markets opened on a positive note despite elevated US bond yields and crude oil prices and traded within a range throughout the session.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में आईटीसी 2.5%, SBI 2% से अधिक और एक्सिस बैंक के शेयरों में लगभग 2% की बढ़त हुई। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में TCS 2.5% से अधिक, इंफोसिस लगभग 1.5% और टेक महिंद्रा के शेयरों में 1.3% की गिरावट आई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 18 out of the 28 sectors edged upward among the top gainers. Insurance advanced 2%, FMCG rose over 1.4% and PSU banks added 1.1%. In contrast, Focus IT shed 1.5%, IT lost 1.4% and telecommunications dropped almost 0.8%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,351 companies declined, 1,979 companies advanced, and 231 companies remain unchanged.
0: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में आज अपरिवर्तित रूप से 95.96 रुपए पर बंद हुआ। सिद्धार्थ, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें जो हैं उसमें गिरावट आई है, और एक तरफ हम देख रहे हैं वहीं पर अपने स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि शुरुआती बढ़त जो है उसे उसी तरीके से रेंज बाउंड में रखा है, तो ये क्या दर्शाता है, क्या इंगित करता है?
2: नहीं प्राची, जो आपने बात कही कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, मैं उसको कहूंगा कि मामूली गिरावट आई है। अभी भी हमारे लिए वो जो है अनकंफर्टेबल रेंज के बाहर है, मतलब जो कंफर्टेबल रेंज है उसके बाहर है, मतलब 100 बिलियन डॉलर। अभी भी क्रूड प्राइसेस मुझे लगता है 107 बिलियन डॉलर के आसपास है, और जो इंडियन बास्केट है वो तो तकरीबन,
0: लेकिन जो ही गिरावट आई है मे बी उसका पॉजिटिव सेंटिमेंट वहां झलक रहा हो।
2: हाँ बिल्कुल, हाँ हो सकता है कि आज एक इमीडिएट जो आज आपने देखा बाजार जो पॉजिटिव जोन में थी वो एक कारण हो सकता है, लेकिन जो आपने बात बोली कि रेंज बाउंड है, कहीं ना कहीं एक ब्रॉड रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, और जो दुनिया में अनिश्चितता है चाहे वो क्रूड ऑयल को लेके हो, जाए मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है, और दिनों दिन वो स्थिति कोई सुधार नहीं दिख रहा है, अनिश्चितता जो है एकदम निश्चित हो गई है जिसको कहा जाए, तो मुझे लगता है वो बड़े कारण है। ये और ये सब तब है जब कि जो भारत के अपने आर्थिक जो इकोनॉमिक आप पैरामीटर्स कह लें या जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो एकदम बढ़िया हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। हमारा जीडीपी जो Q1 का आया बहुत ही उत्साहवर्धक था, नंबर 7.8 जो कि एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा आया, और उसके अलावा अगर अभी भी आप इन्फ्लेशन देखेंगे ठीक है थोड़ा ऊपर आ रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से दबाव है, लगातार बढ़ रहा है, अब तकरीबन 5% के आसपास है, लेकिन जो रेंज है आरबीआई की अभी भी उसके अंदर है, जो तो मुझे लगता है, और जो भी आप डेटा देखेंगे, टैक्स का डेटा देखें, चाहे जीएसटी कलेक्शंस का डेटा देखें,

0: सेल्स या जो भी ऑटो सेक्टर में जो सेल्स हैं, तो सारा आपको पॉजिटिव साइड है. लेकिन चूंकि जो दुनिया में अनिश्चितता है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अनसर्टेनिटी है, कहीं ना कहीं वो हमारे बाजार पे हावी है.
1: So today, do you expect that there was short covering in the market because we saw a bounce back in the Nifty Bank, which went up by almost 1%. PSU Bank Index also went up. Do you see value buying in the markets right now, even though if it's for one day?
0: I think, Arjun, what you're saying is I would agree more with the word value buying. I think people are also shifting more from small cap, medium, mid caps to the defensive, to the large caps, probably looking at more secure, trying in these times of uncertainty, you tend to, exit the stocks or the benchmarks where you see there could be more volatility. Obviously, the first in line to take hit is obviously the small caps and the mid caps. So probably I think the intent of the investor is to shift to the safer havens, and obviously then large caps are the best bet in these times of uncertainty.
1: Also, central banks are holding their meetings. RBI is going to conduct its monetary policy committee meeting from October 5 to 7. Repo rate is 5.25%. Do you see rates being hiked and valuations change? Because banking incomes will also be impacted accordingly.
0: See, Arjun, more than that, I think before RBI takes a decision on the rates, on the repo rate, I think more than that, the what is being watched is the decision what tonight we get on the decision taken by the Fed Reserve on its own interest rate, because the expectation is there's a huge expectation that they would hike interest rates in US. And what happens is, and already if you look at the US bond yields, they're over 5% in last, since I think after 2023, it's for the first time that they have inched over 5%, the 10-year bond yield. And obviously that also puts pressure on Indian bond markets, also on the also indirectly on the Indian equity market, because then the FIIs, the foreign investors, tend to go and invest in the US market because the interest rates obviously are going to go up. And it is always said that US Treasury bonds are the most secure instruments, most secure instruments in the world.
2: सिद्धार्थ, क्षेत्रीय स्तर पे जैसा कि अर्जुन ने पहले अपना सवाल पूछा, मैं उसी स्तर पर आपसे बात करना चाहूंगी कि क्षेत्रीय स्तर पे अगर हम देखते हैं तो एक आम निवेशक, एक आम जो श्रोता जो हम हमारे प्रोग्राम को सुनता है, उनके लिए आप बताइए कि अभी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या यूं कहिए कि समझदारी भरा हो सकता है?
0: नहीं, देखिए, एक तो मैं पहली बात ये कहूँगा कि अगर आप इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय बाजारों में या शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
2: जी
0: तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको, धैर्य के साथ आएं, क्योंकि दुनिया में बहुत अनिश्चितता है और ये अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है. और ये जो अभी तक एक फंडामेंटल्स, बहुत सारे जो फंडामेंटल चीजें हम मानते थे कि जब भी अनिश्चितता आती थी या तेल की कीमतें बढ़ती थी या वॉर आता था, तो ये हमेशा माना जाता था कि गोल्ड प्राइसेस हमेशा बढ़ती हैं. इस बार भी बढ़ी हैं, लेकिन उस अनुपात पे नहीं
2: उस
0: बढ़ा
2: रफ्तार
0: गोल्ड.
2: में नहीं.
0: इनफैक्ट बीच में जब अनसर्टिनिटी बढ़ी तो हमने देखा गोल्ड प्राइसेस नीचे भी आई. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन हमारे साथ एक जो एक मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है वो है क्रूड प्राइसेस, क्रूड ऑयल, जो कि हम 90% इंपोर्ट करते हैं. और क्रूड काफी सारी इंडस्ट्रीज के लिए, क्रूड ऑयल इज द रॉ मटेरियल, द मेस मटेरियल विच एक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहेगा, और अभी वो लग रहा है कि रहेगा लंबे समय तक. सप्लाईज नहीं, मुझे लगता है इम्पैक्ट होगी, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पे भी इम्पैक्ट होगा. तो थोड़ा बहुत अगर आप भारतीय बाजारों में इन्वेस्ट कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, तो थोड़ा लंबी अवधि, मतलब मेरा मानना है कि कम से कम 3 साल का मन बना के आए, कि मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगले साल बहुत मुनाफा हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो, क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में ये रख के आए कि थोड़ा आपको समय वेट भी करना पड़
2: नहीं,
0: सकता है.
2: क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि जब बाजार ढलान पर हो तब खरीदारी, असल खरीदारी उसी वक्त होनी चाहिए.
0: हाँ, लेकिन प्राची होता क्या है कि जब भी आप देखेंगे कहीं अनिश्चितता आती है या कहीं डर होता है, भय होता है, तो हर आदमी बहुत अपने
2: सोच
0: डिसीजंस
2: समझकर
0: को बहुत ना कैलकुलेटेड, या आदमी सोचता है थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ी स्थिति जो काले बादल हैं वो छट जाएं तब लगाएंगे. लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, अगर

0: जी आप मुझसे पूछेंगे
1: जी
0: तो मैं जरूर ऐसे वक्त को चुनूंगा निवेश करने के लिए, लेकिन हाँ मैं ये भी साथ में कहूंगा कि बहुत बढ़िया से अपने अपनी जो है फैक्ट फाइंडिंग बढ़िया से करें, अच्छी कंपनियां चुनें। और आपने जिन क्षेत्रों की बात की तो मैं वहां पे आजकल जो नया, एक तो जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नए क्षेत्र हैं, स्पेस है, डिफेंस है,
1: ईवी है,
0: ईवी है, बहुत बढ़िया आपने बोला, उसके साथ साथ फार्मा हमेशा एक डिफेंसिव क्षेत्र है, तो मैं बोलूंगा ऐसे ऐसे अच्छा एफएमसीजी को भी मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि इंडिया की जो कंज्यूमर स्टोरी है, जो कंजम्पशन स्टोरी है, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है।
2: सो स्पीकिंग अबाउट इन्फ्लेशन इंपैक्टिंग इंटरेस्ट रेट्स अर्लियर एंड देन लिंकिंग इट टू एफएमसीजी बिकॉज देयर मार्जिन्स हैव ऑलवेज बीन अफेक्टेड बाय बिजनेस inflation at the wholesale price index level, but that went up by 1.4% today. You said that it's a good sector to get into, especially long term. What are the other factors that one can look into when it comes to FMCG, fast moving consumer goods?
0: See, Arjun, I would say as far as fast moving consumer goods, I think it is always, it's an area which I think always is, you will always have, stays in green. I don't see very lot of challenges for...
2: Like pharmaceuticals.
0: Yeah, because FMCG, what do we mean by FMCG? What the products which you, goods and products which we consume on a daily basis. So I think the demand in India is, the consumption demand is intact, and even there was a fear some about a month back or 15 days back that our monsoons have not fared that well. But I think as time passed on, even monsoons have been good. Agriculture sector is doing good. So I see the rural demand also intact, and inflation for us has still not passed on or has not grown so rapidly. So I think, and as far as RBI guidance, if we have to go by their guidance, so they do not see it going beyond 6% for the entire year. So I think if inflation also remains under control, so I don't see FMCG companies passing on prices, or we see prices going up sharply.
2: What about information technology? That saw a drop in valuation today. It saw a drop in valuation yesterday also, despite their earnings being good.
0: I think, Arjun, in the near term, IT valuations have been taking a hit, and not to obviously say about today or yesterday, but I personally believe that Indian IT industry is very robust, very strong, and already we are seeing there are a lot of questions being raised on the way we are seeing artificial intelligence, or the uncertainty being created by artificial intelligence. So I think it's a good value buying if you ask me. But yes, one should wait and watch, and I think probably invest in small tranches.
1: अन्य खबरों पर भी सिद्धार्थ आपसे बात करेंगे, मगर उससे पहले जानते हैं कि दरअसल अन्य खबरें हैं क्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ पाएंगे।
3: पुराना जो कैप था वो सितंबर 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था, तब से अब तक एवरेज जो सैलरी है वो काफी बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है। आज एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की एवरेज इनकम करीब करीब ₹23,000 पर मंथ है, जो कि पहले से करीब 2.5 गुना ज्यादा बढ़ी है। भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीज एवरी ईयर।
1: सिद्धार्थ, विकसित भारत की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए जो सामाजिक सुरक्षा की बात आती है, उससे ये किस तरीके से कनेक्टेड है और कैसे लाभान्वित करेगा?
0: नहीं, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसे मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्री जी ने भी बोला अपने अनाउंसमेंट में, क्योंकि अब अगर उसको 15,000 से 25,000 कर रहे हैं तो, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 25,000 तक जिसकी सैलरी है उसको अनिवार्य रूप से, जो सबसे बड़ी चीज यहाँ आती है कि कंपल्सरीली आपको ईपीएफओ के दायरे में लाया जाएगा, या कंपनी आपको ईपीएफओ के जो बेनिफिट है, जो सोशल सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है, उसमें आना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवर द ईयर्स जैसा उन्होंने बोला 2014 में पिछले लास्ट रिवीजन हुआ था 15,000 तक, तो उसके बाद से बिल्कुल ठीक बात है कि अब सैलरीज बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, तो किसी भी एवरेज सैलरी 23,000 जो उन्होंने जिक्र भी किया, तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
1: क्या ये मतलब असंगठित क्षेत्र

0: इंगित करता है इस समय जिस तरीके की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए?
1: नहीं देखिए, जहाँ तक जापान की बात है, जापान में मुझे लगता है पहली बार अभी तक डिफ्लेशन था, तो पहली बार अब इन्फ्लेशन की वजह से मुझे लगता है जापानीज मार्केट्स में हमको इतना पॉजिटिव वो दिख रहा है. लेकिन हालांकि वहाँ पे अभी भी जो उनका पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट का अभी भी जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी हाई है. तो अभी मुझे लगता है अर्ली डेज, बट यस देर इज़ गुड न्यूज़ फॉर देम इन टर्म्स ऑफ AI, ऑटोमेशन, इन इस तरह. और जो कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो रिफॉर्म्स वहाँ पे किए हैं, तो कंपनियों के रिजल्ट्स भी बेहतर आ रहे हैं. तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें वहाँ की मार्केट्स में एक जो है अपटेक दिख रहा है. साथ साथ जो कॉस्पी की आपने बात कही, वो मतलब आप सबको पता है, क्योंकि दो ही बड़े कारण है उसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दो बड़ी कंपनियां हैं जो चिप्स बनाती हैं, तो वो उनकी वजह से वो जो है उस एक्सचेंज में बढ़त दिखती है.
0: जी.
2: Moving on to the crude oil market, global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 1.2% down at $107.44 per barrel in intraday trade at the time of writing this report. Meanwhile, West Texas Intermediate crude was trading 1.8% lower at $103.93 per barrel.
0: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 1% की बढ़त के साथ 1,52,362 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 1.1% की बढ़त के साथ 2,31,337 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. संक्षिप्त में मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी सोने और चांदी के भाव पर.
1: मुझे लगता है प्राची, अभी गोल्ड और सिल्वर मुझे लगता है दोनों में ही हम रेंज बाउंड एक्टिविटी देख रहे हैं, और मुझे आने वाले समय में ऐसा कोई स्पर्ट नहीं दिखाई दे रहा अनटिल अनलेस यस मतलब ग्लोबली कोई ऐसी बड़ी क्राइसिस जो अभी है उसमें और स्थिति खराब हो जाए तो शायद गोल्ड. हालांकि ये मैं जरूर मानता हूं कि प्राइसेस बहुत ज्यादा मॉडरेट नहीं करेंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स भी बहुत बड़े पैमाने पे अभी भी गोल्ड खरीद रहे हैं.
0: बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए.
1: धन्यवाद आप दोनों का.
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise, Sensex gains over 300 points. Nifty settles at 23,218. New Zealand passes legislation to implement FTA with India, and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च

0: New Zealand passes legislation to implement FTA with India, and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ जैसे नासिर हुसैन, वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मन मीत और मैं हूं आपके साथ रितिका।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावित हो जाएगी।

0: मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मारगाथम कुमार वेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जाँच आज होगी जबकि 19 तारीख तक नाम वापिस लिए जा सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह सम्मेलन मौजूदा और उभरती समुद्री सुरक्षा चुनौतियों, परिचालन तत्परता और संसाधन तैनाती, क्षमता वर्धन और बल के आधुनिकीकरण की योजना तथा राष्ट्रीय समुद्री रणनीति के अनुरूप संगठनात्मक प्राथमिकताओं पर केंद्रित होगा। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है 12:11 और 2 सेकंड। मैं हूं अंजू आपके साथ, कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह कुछ अल्फाज लिए। मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता, मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता, ये वो परिंदा है जो बस

धड़कने तो चलती थी पर दिल में कोई हलचल नहीं थी। धड़कने तो चलती थी पर दिल में कोई हलचल नहीं थी। हम तो सिर्फ जी रहे थे क्योंकि जिंदगी नहीं थी कुछ भी तेरे बगैर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मेरी नजरों से देखोगे तो ये कायनात हसीन लगेगी, मेरी नजरों से देखोगे तो ये कायनात हसीन लगेगी, क्योंकि जहां तुम ना हो वो दुनिया तो हमें भी वीरान ही लगेगी।

0: महलों की ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने दिल को, महलों की ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने दिल को, क्योंकि जहां तुम साथ हो सपनों का महल तो वहीं बन जाता है।
1: एक

हर ख्वाब अधूरा है अगर उसमें तुम नहीं हो, हर ख्वाब अधूरा है अगर उसमें तुम नहीं हो, और जिसमें तुम हो उस ख्वाब से हम कभी जागना नहीं चाहेंगे।

क्या करूं कि बंद आंखों में भी बस तेरा ही चेहरा नजर आता है, क्या करूं कि बस बंद आंखों में भी बस तेरा ही चेहरा नजर आता है। सोचूं तो तू ख्याल में है और सोऊं तो तू मेरे ख्वाब में है।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था। आपसे मुलाकात होगी 1:10 पर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल

0: सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरीके से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 27% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मारगाथम कुमारवेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the semiconductor roundtable with leading global CEOs in New Delhi. The Prime Minister has called for greater industry participation in skilling innovation and emerging technologies such as artificial intelligence, AI and quantum computing. The roundtable was held ahead of the inauguration of the 5th edition of Semicon India by Prime Minister Modi in New Delhi today. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund Organisation from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while addressing the media after the Cabinet meeting in New Delhi. He said the decision is expected to benefit over 51 lakh additional. Mr. Vaishnaw said the revised wage ceiling will come into effect from today on the occasion of Vishwakarma Jayanti. India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to a media query, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said the ministry has seen reports in this regard and India's position on this matter is clear and consistent. He said there is no boundary between Pakistan and China. Mr. Jaiswal said New Delhi rejects the Pakistan-China Boundary Joint Commission, which is without any legal basis. BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan from today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday with a focus on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. The campaign will also mark 25 years of Mr. Modi taking oath as the Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. Briefing media in Kolkata ahead of the launch, senior BJP leader and Defence Minister Rajnath Singh praised Prime Minister Modi as a true leader, one who

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. अंजू है एक बार फिर से आपके साथ कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर. एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार. यकीन मानो तुम सामने आते हो तो हम पलकें झपकना भी भूल जाते हैं, और कहीं तुम ओझल ना हो जाओ इसलिए तुम्हें इन आंखों में ही छुपा लेते हैं.

रात भर जागते हैं इसी कश्मकश में गालिब, रात भर जागते हैं इसी कश्मकश में गालिब, कि आज हमारे सपनों में कौन आने वाला है।

जमाने भर के सारे वाके भूल बैठे हैं हम, जमाने भर के सारे वाके भूल बैठे हैं हम, बस बस वो एक तेरा मिलना और मुस्कुराना याद है हमें।

थक चुकी हैं निगाहें सुने रास्तों को तकते तकते, थक चुकी हैं निगाहें सुने रास्तों को तकते तकते, जो मुड़कर मेरी बाहों में आए वो राह दिखा मेरे महबूब को।

नीम से कहो कि अब हमसे कोई रिश्ता ना रखे, नीम से कहो कि अब हमसे कोई रिश्ता ना रखे, क्योंकि हम सोना भी चाहें तो उनकी याद हमें सोने ही नहीं देती।

होश में रहना अब गवारा नहीं इस दीवाने दिल को, होश में रहना अब गवारा नहीं इस दीवाने दिल को, क्योंकि जब से तेरी मदहोश आंखों को देखा है तब से हम जीना ही भूल गए।

लोग पूछते हैं मुझसे मेरी बेचैनी का सबब, लोग पूछते हैं मुझसे मेरी इस बेचैनी का सबब, अब कैसे समझाऊं कि तुम्हारे बिना ये दिल कहीं लगता ही नहीं।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कहीं जाएगा मत, जल्द मिलेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरीके से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को कल फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी के माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। एनआईए ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल से 32वां अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन शुरू हो गया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रामेन डेका ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सशक्त, पारदर्शी, समावेशी और तकनीक सक्षम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आज 3 वर्ष पूरे कर लेगी। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। योजना का उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 today at Yashobhoomi in New Delhi. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Ahead of the inauguration, the Prime Minister chaired a semiconductor roundtable with the leading global CEOs in New Delhi yesterday. Mr. Modi stressed the need for close cooperation between the government and industry to strengthen India's semiconductor sector. He also called for greater industry participation in skill development, innovation, artificial intelligence and quantum computing. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund Organisation from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while addressing the media after the Cabinet meeting in New Delhi. Mr. Vaishnaw said the revised wage ceiling will come into effect from today on the occasion of Vishwakarma Jayanti.
2: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. इससे करीब 51 lakh employees को इसका benefit मिलेगा, जो कि 15 to 25 वाले band में थे, they will start getting covered in the new PF rules. भारत सरकार का इस पे estimated government expenditure रहेगा about 11,339 crore rupees every year.
1: India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to media queries, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said the ministry has seen reports in their regard and India's position on this matter is clear and consistent. He said there is no boundary between Pakistan and China. Mr. Jaiswal said New Delhi rejects the Pakistan-China Boundary Joint Commission, which is without any legal basis. BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan from today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday, with the focus on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service.

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 3 सेकेंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं अंजु एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का स्वागत। आप सभी को मेरा नमस्कार और शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

अल्फाज की ज़रूरत ही कहाँ होती है इस मोहब्बत में, अल्फाज की ज़रूरत ही कहाँ होती है इस मोहब्बत में, जब होठ चुप हैं तो ये दिल दिल को सुन ही लेता है।

0: लोग तो खो जाते हैं मंजिल की तलाश में अक्सर, लोग तो खो जाते हैं मंजिल की तलाश में अक्सर, अब हमारी तो मंजिल भी तुम ही हो, तो फिर जाना कहाँ।
1: मोहब्बत की तड़प

दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई अंजू है आपके साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

आकर रोज़ तड़पाना अच्छा नहीं, ख्यालों में आकर यूँ रोज़ तड़पाना अच्छा नहीं, याद आने से बेहतर है कि तुम आ ही जाया करो।

नजरें तो रोज हजारों चेहरों को देखती है, नजरें तो रोज हजारों चेहरों को देखती हैं, पर ये दिल दिल गवाही देता है कि हम सिर्फ तुम्हें ही चाहते हैं।

बस तो अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आगे का कार्यक्रम लेकर आएंगी भारती, हमराही में रहेंगे आपके साथ। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल से 32वां अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन शुरू हो गया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रामेन डेका ने किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मारगाथम कुमार वेल और सत्यबामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी, जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले आज से शनिवार तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए भारत से सहायता लेने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की और आप सबका करती हूँ स्वागत आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ।

रात अभी बाकी है, कुछ अनकहीं बातें अभी बाकी हैं। कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं और खामोशियां दिल की सारी कहानी कह जाती हैं।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? हा? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

प्यार अक्सर दस्तक देकर नहीं आता, बस पता ही नहीं चलता कि कब किसी की मुस्कान दिल में उतर गई और कब एक अनजान रिश्ता अपना सा लगने लगा।

प्रीत का रिश्ता कोई हिसाब नहीं मांगता, जहां मन को अपनापन मिल जाए वहीं से जिंदगी की राह थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है हमराही। दिल की आवाज़ बड़ी अनोखी होती है, वे कभी शब्दों में नहीं बोलता, फिर भी उसकी हर कही बात महसूस होती है। कुछ रिश्ते समझे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं।

जब दिल में किसी याद का उजाला हो तो बाहर के चिराग भी फीके लगने लगते हैं। कभी एक याद ही पूरी रात को रोशन कर देती है, और अभी एक एहसास सारी खामोशी को अपना बना लेता है।

रिश्तों की खूबसूरती बड़े वादों में नहीं होती, बल्कि उन छोटी छोटी बातों में होती है जिन्हें याद करके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाए। और इसी के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति और छोड़कर जा रही हूँ बहुत ही प्यारे गीत के साथ। समय कह रहा है कि अब आपसे विदा ले ली जाए, लेकिन जल्द हाजिर होंगी 4:10 पर लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तमिलनाडु में AIADMK के विधायकों मारगाथम कुमार वेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले आज से शनिवार तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए भारत से सहायता लेने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ प्रोग्राम अरुणिमा में। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की गीत, बहुत प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म बाप बेटी से, लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीतकार मदन मोहन।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म विधाता से। गीत को अपनी आवाज से सजाया है सुरेश वाडकर और अनवर ने। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार आनंद बख्शी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म धर्म कांटा से मोहम्मद रफ़ी और भूपेंद्र की आवाज़ में, संगीतकार नौशाद, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

और प्रोग्राम अरुणिमा की अंतिम प्रस्तुति सुनते हैं फिल्म प्रेम धर्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में, और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, इस गीत के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ। जल्द मुलाकात होगी यानी 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भूर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन के सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीना सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मरगाथम कुमारवेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मंदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी, जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को कल फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले आज से शनिवार तक भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। नेपाल के वित्त सचिव घनश्याम उपाध्याय ने बताया कि श्री वागले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ।

आज अपने दिल के उस रास्ते पर चलें जहां उम्मीद हमारा साथ दे। मंजिल कितनी भी दूर हो, शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है।

प्रकृति हमें हर सुबह एक नया संदेश देती है। पेड़ की हर डाली पर नई कोपलें, हर फूल में नई मुस्कान और हर किरण में नई ऊर्जा। जीवन भी ऐसा ही है, हर दिन हमें फिर से खिलने का अवसर देता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी। सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं बल्कि नए विचार नए संकल्पों की शुरुआत है। मन में विश्वास हो तो साधारण सी सुबह भी जीवन में उम्मीद की रोशनी भर देती है।